0: फिल्म सौदागर से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, और जिसमें बबली जी ये फिल्म जो कुछ साल पहले बनाया गया है जिसमें और एक नया एक्ट्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया था ना।
1: हाँ जी, ये फिल्म सौदागर जो डायरेक्टर सुभाष घई जी ने बनाई थी।
0: सुभाष घई जी ने?
1: हाँ जी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाई, हीरो, विधाता, कर्ज, सौदागर, कर्मा, बहुत अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने।
0: यानी कि ढेर सारी उनका जरूर उनका फिल्म बड़ा हिट फिल्म होते
1: हैं। हाँ जी, सुभाष घई जी की सब फिल्में ज्यादातर हिट हुई हैं।
0: और खास करके ये फिल्म में जब बनाई तो राजकुमार,
1: हाँ जी, राजकुमार और दिलीप कुमार जी,
0: तो दोनों काफी एज के हो गए थे।
1: हाँ जी, इन्होंने दादा की भूमिका निभाई इस फिल्म में।
0: दादा की भूमिका निभाई हाँ इस फिल्म में। और खास करके ये फिल्म बनाने के लिए भी बहुत, मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि जो डायरेक्टर था बहुत परेशानी उसके ये लोग दिए।
1: हाँ जी, क्योंकि ये दोनों अपने जमाने के अरे इतने फेमस मशहूर अदाकार, और अगर एक डेट देता तो दूसरा ना देता, तो बड़ी मुश्किल से सुभाष घई जी ने ये फिल्म कम्प्लीट की।
0: उसके बाद में फिल्म बनाना ही बंद कर दिया?
1: हाँ, बहुत सालों से उनकी कोई फिल्म आई भी नहीं है,
0: तो ये बात हो जाता। पर ये एक फिल्म बना था और खूब चला था।
1: हाँ जी,
0: जो मनीषा जो आप कह रहे हैं,
1: हाँ जी, नए लड़का लड़की इंट्रोड्यूस किए थे सुभाष घई जी ने, मनीषा कोहिराला और विवेक मुस्कान।
0: तो मनीषा जो कि एक परिवार से था जो पॉलिटिक्स में,
1: हाँ जी, इनके दादाजी शायद पॉलिटिक में थे
0: और ये आकर के फिल्मों में काम किए।
1: हाँ जी, नेपाल की हैं, नेपाल। हाँ जी, नेपाली।
0: तो दोस्तों कुछ ना कुछ छोटा मोटा संदेश जो हमारे पास होते हैं तो हम कोशिश करते हैं आपके लिए जरूर रखने के लिए। पर बबली जी ये है आज का संदेश, जो जिस दिन जैसे कि जिस दिवस का जन्म हुआ है आज का, जो हमारे इतने ढेर सारे और गीतों जो हम सब लेकर आए हैं, जो हर बार दोस्ती फ्रेंडशिप पे जाता है, तो क्यों ना हम पहले गीत के ओर बढ़ते फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।

0: दोस्तों, ये सुंदर सा गीत जो हम सब चलाए और गीत चलाते चलाते बस कार्यक्रम में हमारे मास्टर जी उपस्थित हो गए हैं। तो मास्टर जी, ये गीत आज जो चल रहा है सिर्फ दोस्ती के लिए, क्यों ऐसा है कि ये सिर्फ दोस्ती का गीत आज रखे गए हैं? पर अभी आज का जो संदेश है, कि जिस दिन हमारा जन्म हुआ है, जिसमें पंडित गंगाराम जी ने ये संदेश को हम सब के लिए भी खोज करके रखे, तो क्यों ना हम सभी सुनने वालों को ये संदेश को सुनाते हैं कि उस दिन से जुड़ा हुआ क्या क्या बात हो जाते हैं, क्या हम उससे किस प्रकार से हमारा भला उसमें क्या हो सकता है। तो राजेंद्र जी, पहले तो आप अपना मस्तदार इंट्रो कर कीजिए।
1: फॉर्म हिंदुस्तान रेडियो के श्रोताओं को सबको नमस्कार। और आज थोड़ा सा विलम्ब हुआ, कुछ कारणवश कुछ काम रहा इसकी वजह से, और सब लोग हमको हर वीरवार को सुनते थे और आगे भी सुनते रहेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। और जो कार्यक्रम है आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि किस बार को, जैसे 7 बार होते सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, रवि, तो कौन से बार को जन्म लेने वाला व्यक्ति कैसा रहता है, उसके भाग्य में क्या होता है, और 7 बार होते तो 7 बार में किसी ना किसी बार को तो एक व्यक्ति पैदा होता है। उसी उपलक्ष में ये कार्यक्रम जो है, सब लोगों को जिसका जो बार का जन्म रहा उसको वो बार सुने और अपने ऊपर देखे कि वो इस प्रकार का व्यक्ति है कि नहीं। तो शुरू करते हैं।
0: तो इसमें उस यानी कि उस पे ध्यान देना है कि जो आप अपने आप में उसमें कुछ पहचान सकते हैं या नहीं, लोग इस बात को सुन के, और जरूर उस पे ध्यान देना।
1: हाँ, व्यक्ति के गुण, और हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उसी के अनुसार वो व्यक्ति को सब लोग उन्हीं गुणों से जाना जाता है।
0: राजेंद्र जी, यहाँ ये बात हो जाता है कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से, आत्मा धर्म से। तो ये बात हो जाता है कि जहाँ ज्ञान है और ज्ञान को प्रयोग करे तो कुछ न कुछ संदेश उसमें से निकलेगा ना, ये जो आप अभी हम सब के लिए रखने वाले हैं।
1: जी, तो ये सब ज्ञान की बात है, इसमें से संदेश तो निकलना ही है। बात करते हैं सबसे पहले रविवार की। रविवार से बारों का प्रारंभ होता है। लोग सोमवार से प्रारंभ इसलिए करते हैं क्योंकि रविवार को छुट्टी होता है और सोमवार को ड्यूटी होता है, तो अधिकतर लोग ड्यूटी करते हैं या कुछ लोग बिजनेस करते हैं तो अपना बिजनेस को भी रविवार को बंद रखते हैं। मैंने देखा है कि वेस्टर्न कंट्री में तो 2 दिन बंद रहता है, सैटरडे संडे, और जो फ्राइडे है फ्राइदाक, उसमें भी आधा दिन काम करते हैं, तो कुछ 5 दिन पूरा काम किया, 2 दिन छुट्टी हुआ।
0: राजेंद्र, ये आज से कुछ 25 साल पहले होता था ना?
1: जी।
0: तो हॉलैंड में, जैसे हम लोग यहाँ ये प्रोग्राम बनता है हॉलैंड देश से ना,
1: जी,
0: तो यहाँ भी ऐसा होता था कि रविवार को दुकानें आदि बंद रखा जाता था, पर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हफ्ता में 7 दिन अब खुलने लगा।
1: हाँ,
0: बहुत कम है जहाँ पर कि है कि वो बंद रखते हैं,
1: क्योंकि जो ऑफिस होते हैं वो तो बंद रहते हैं।
0: ऑफिस आदि वो तो जरूर बंद,
1: वो तो बंद रहते हैं, लेकिन जो दुकान है, लोगों को उसी दिन सैटरडे संडे को टाइम लगता है दुकान में जाने का, इसलिए वो लोग उस दिन दुकान खोलते हैं, ये कारण है। और कुछ लोग जो पहले बंद रखते थे उन्होंने भी धीरे धीरे देखा कि लोगों को टाइम शॉप में आने का तो इस दिन रहता है, इस दिन, इसलिए उस दिन खोलते हैं। और किसी और दिन को मैंने देखा है कि कोई सोमवार को बंद करता है, कोई मंगल को करता है, एक दिन तो बंद जरूर करते हैं। और जो 7 दिन काम करते हैं तो उनके लिए अगर कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन 1-2 दिन हफ्ते में रेस्ट होना जरूरी,
0: आराम करना चाहिए,
1: आराम करना चाहिए
0: जी।
1: लेकिन हर वही आदमी थोड़ी रोज रहता, कोई दूसरा आदमी उस दिन रहता होगा, इसलिए आराम वो करता है, दुकान आराम नहीं करती, व्यक्ति आराम करता है,
0: व्यक्ति आराम करता
1: जी। तो बात करते हैं रविवार के जन्म लेने वाले लोगों के बारे में। रविवार को जन्म लेने वाले लोगों को भाग्य का साथ मिलता है, यानी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है कर्म, एक होता है भाग्य। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि काम करते नहीं हो फिर भी उनको सब कुछ मिल जाता है, क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में, तो भाग्य होना भी बहुत जरूरी है।
0: भाग्य,
1: भाग्य, तो जैसे हमारे मामा जी पंडित जी, वो तो भाग्य के बारे में बहुत लंबा लेक्चर बता सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट में यहाँ पे समझा थोड़ा सा बताएंगे लोगों को कि भाग्य, जो भाग्य की रेखाएं हैं, वो भी कर्म से ही बनती है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका भाग्य उसी अनुसार, भाग्य पहले लिख जाता है लेकिन व्यक्ति का कर्मों के अनुसार भी भाग्य बदलता है। इसलिए भाग्य के, खाली भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठना है, कर्म भी करना है। तो इनकी आयु भी अधिक रहती है और कम बोलना पसंद करते हैं ये लोग। कला और शिक्षा के क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करते हैं, साथ ही इनकी रुचि धर्म में भी रहती है। घर परिवार के सदस्यों को खुश रखने का प्रयास करते हैं, यानी इस जो रविवार को पैदा होते हैं लोग, वो इस प्रकार के लोग होते हैं कि सब चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में, मान सम्मान के क्षेत्र में, घर परिवार को खुश रखने के क्षेत्र में, और उपाय क्या है, रविवार को क्या करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, सुबह सुबह जब स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और थोड़ा सा जल में अगर हरिद्रा या चंदन या हल्दी डालते हैं वैसे, और नहीं तो केसर भी डाल सकते हैं सूर्य को जल चढ़ाने के लिए, और तिलक केसर का लगे तो बहुत अच्छा व्यक्ति को सुबह सुबह,
0: केसर का तिलक
1: और सूर्य को हल्दी डाल के जल चढ़ाना चाहिए। सोमवार को जन्म लेने वाले लोगों के बारे में बताते हैं कि सोमवार को जन्म लेने वाले लोग क्या करते हैं, कैसे होते हैं। जो लोग सोमवार को जन्म लेते हैं वो व्यक्ति हंसमुख और मीठा बोलने वाले होते हैं, सुख हो या दुख हमेशा सामान्य रहते हैं।
0: तो मामा जी के मेरे ख्याल से सोमवार का जन्म हुआ।
1: हाँ, मामा जी सोमवार को पैदा हुए थे। ज्ञानी कलाकार और बहादुर होते हैं, यानी बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं। ये लोग कफ संबंधी रोगों से परेशान रहते हैं। कफ, यू नो, बात पित्त कफ होता है ना
0: जी,
1: तो जो कफ
0: निकलते हैं,
1: हाँ, उस रोग से परेशान रहते हैं। बीमारियों के कारण कमजोरी बनी रहती है। इन्हें जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, लेकिन कुछ अच्छा है तो कुछ खराब भी है। हंसमुख है, मीठे बोलने वाले हैं, सुख दुख को समान रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कफ की बीमारी हर समय रहती है, और जीवन में सुख सुविधाएं तो होती है लेकिन बीमार भी रहते हैं। तो बीमार न रहे तो सुख सुविधा का आनंद नहीं उठाया जा सकता पूर्ण रूप से।
0: तो राजेंद्र जी, ऐसा बात है
1: जी
0: कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है,
1: हाँ।
0: लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है। तो क्यों ना हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर वही आज का जो विषय है दोस्ती, जिसे जितना गीत है सब दोस्ती के ऊपर चल रहा है। तो अभी यहाँ व्हाट्सएप बरेख आ गया कि मैं एक बैन वंस दा खबर, तो ये हम लोगों ने गलत कह दी
1: क्या
0: कि
2: मामा जी
0: ने कह दिया कि एक बैन वंस दा खबर, ये तो हमें भी पता था ना, पर फिर भी रेडियो बनाते हैं तो कुछ रख दिया गया था। क्यों ना दोस्ती के माध्यम से एक सुंदर सा गीत और चला देते हैं।
1: दोस्ती के माध्यम से जो गीत है, ये यार सुन यार तेरी, ये यार सुन यारी तेरी, तो ये बोल है गीत के।
0: और ये फिल्म, एक फिल्म जिसमें शशि कपूर जी और अमिताभ बच्चन ने काम किया, राजेंद्र जी, और
1: जी।
0: देखते हैं, सुनते हैं संदेश क्या है इस गीत का।
1: जी जरूर जरूर,
0: क्योंकि सभी सुनने वालों ये जरूर बता दूं कि अभी तो हम सब सिर्फ रविवार और सोमवार के ओर बढ़े ना,
1: अभी तो पांच
0: बाकी है,
1: तो सुनते हैं गीत, इसके बाद शुरू करेंगे।
0: और राजेंद्र जी, यहाँ भी लिख दिया गया है कि एक बैननित अप, एक बोले कि हम बोट में उनका जन्म हुआ है मामा जी का।
1: हाँ, एक बार
0: ये
1: बता
0: तो बताना चाहिए था।
1: कोई नहीं, अगर बोट में जन्म हुआ लेकिन कौन से बार को हुआ, ये चीज हमें चाहे पता करे पहले।
0: हाँ, तो वो भी हो गया, चला देते ये गीत दोस्ती का।
1: दोस्ती का।

0: क्या हुआ?
1: चल तू चला।
0: मैं?
1: अरे चला।
0: नहीं, नहीं, नहीं।
1: अरे मैं हूं ना तेरे साथ।
0: हाँ। अमित
1: कष्ट

0: जो गाना था अरे यार सुन यारी तेरी, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर ने बड़े ही सुंदर इसमें फिल्म बनाई और लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद बात जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था मंगलवार की बात, और मंगलवार को जन्म लेने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। जिन लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ है वे उग्र स्वभाव के होते हैं, यानी
1: उग्र बोले तो राजेंद्र जी, उग्र बोले तो
0: उग्र स्वभाव यानी गुस्सैल होते हैं,
1: ओ खड़ूस थोड़ा,
0: हाँ थोड़ा सा। इसी कारण इनका अपने आसपास रहने वाले कई लोगों से वाद विवाद होता रहता है, यानी लड़ाई झगड़ा भी
1: हो जाता
0: वालों से, हाँ हो जाता है।
1: तो ये
0: इन्हें खून और त्वचा से संबंधित रोग भी हो सकते हैं।
1: ऐसा?
0: हाँ, त्वचा मतलब
1: हाइट,
0: चमड़ी और खून मतलब ब्लड, ये रोग भी हो सकते हैं इनको। और इनके जीवन में परेशानी आती जाती रहती है, इनके जो जीवन है परेशानी आती और जाती है, लेकिन उनको उपाय क्या करना चाहिए, हनुमान जी को सिंदूर और बना हुआ पान चढ़ाएं हनुमान जी को।
1: जी
0: कुछ कह रहे थे आप?
1: नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी तो कार्यक्रम में हम सब तो मंगलवार तक पहुंचे हैं, और मंगलवार तक पहुंचे हैं तो जैसे कि अब कितने लोग हैं ना, कि हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो नवरात्रि से शुरू होता है ना
0: जी,
1: तो अब जैसे कि हम लोग का हिंदू कैलेंडर इस समय हो गया है 2079 नेखनत शरीफंता। हमारे जो जैसे कि हमारे मामा जी जैसे भाई हुए ना, तो उनका जन्म मिलेनियम जो त्वेई दशंत हुआ था, तो यहाँ भौलान में मिलेनियम मनाया गया था, तो उसका जन्म जो आज से जो जैसे कि नेखंती जिसका जन्म हुआ 1943, तो इन 1943 में जो हमारे ईश्वरी गणित होता है ना, जो यानी कि जैसे हम कैलेंडर जो देखते हैं आजकल जो त्वेई दशंत त्वेई त्वेई तक चल रहा है, तो वो जैसे कि 1943 नेखंती द्रियम फेर तक में जिनका जन्म हुआ है, तो वो हमारे विक्रम संवत्सर जो विक्रम
0: आदित्य था,
1: तो 2000 मिलेनियम उस समय से था, तो आज हो गया है 2079 फतह। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये बात हो जाता है कि हमारे जो गणित है, हमारे जो हिंदू गणित है विक्रम संवत्सर, तो कितने साल आगे है क्रिश्चियन कैलेंडर से।
0: हाँ, उसको हिंदी में बोलते हैं 2079।
1: ऐसा
0: 2079 मतलब 20 बार 100 और 79 मतलब
1: 8 और 9 और 89। तो दोस्तों हम आगे कार्यक्रम बढ़ाने वाले हैं, और कार्यक्रम में अभी हम सब छलांग लगाने वाले हैं राजेंद्र जी बुधवार की ओर
0: छलांग लगाने वाले हैं, और बुधवार को हमारे मामा जी का भी जन्म हुआ है
1: जी, मामा जी
0: तो
1: का जन्म।
0: तो मामा जी कान लगा के थोड़ा सुने कि बुधवार के जन्म किस प्रकार से होने वाले, जन्म जो बुधवार को जिनका जन्म होता है वो किस प्रकार के लोग होते हैं।
1: नहीं राजेंद्र जी, मैं देख रहा हूँ जैसे कि लग रहा है कि लोग जो बुधवार का जन्म हुआ है तो वो रेडियो बिल्कुल कान के पास लगा लिया, वो उसका जरूरत नहीं, रेडियो में एक बटन होता है ना, तो उसे राइट के ओर जब आप घुमाएंगे तो जोर अपने हो जाएगा।
0: हाँ, तो उसको जोर से नहीं बल्कि ध्यान से सुनना चाहिए।
1: ध्यान से सुनना चाहिए जरूर।
0: तो जैसे कि हमारे मामा जी का जन्म बुधवार को ही हुआ था और बोट में जन्म हुआ था, तो इसलिए मामा जी सबसे विशाल इस दुनिया में कुछ अलग ही प्रकार के आदमी हैं। उन्होंने क्या नहीं इस 32 देशों में मूर्ति दान करी, मूर्ति की स्थापना करी, और बुधवार के जन्म लेने वाले लोगों का अलग ही कुछ महत्व होता है। तो बुधवार के दिन जन्म लेने वाले लोग धर्म कर्म में ध्यान लगाने वाले होते हैं, ये बुद्धिमान और मीठा बोलने वाले होते हैं, माता पिता से विशेष प्रेम रखते हैं, इन्हें शरीर की अपेक्षा दिमाग से संबंधित कामों में अधिक लाभ मिलता है, यानी दिमाग से अगर काम करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, शरीर से काम करेंगे तो कम मिलेगा। दो प्रकार से काम किया जाता है, कुछ लोग तो मजदूरी दिन भर करते हैं तो उनको मिलता है 100 यूरो, और कुछ दिमाग से काम करते हैं तो उनको मिलता है 300 यूरो।
1: तो दिमाग और जो दो दो हाथ दो दो पांव से जो मजदूर होता है उसमें अंतर हो जाता है,
0: उसमें अंतर हो जाता है। इसलिए दिमाग से काम करना बुधवार के दिन जन्म ले वाले ज्यादा कर सकते हैं।
1: राजेंद्र जी,
0: इन्हें मूर्ख बनाना भी आसान काम नहीं, कोई इनको मूर्ख
1: नहीं बना सकता।
0: ना, नहीं, नहीं। लेकिन अगर इनका उपाय क्या है, क्या और अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, गणेश जी को 11 दुर्बा की गांठ हर बुधवार को इनको चढ़ा देना चाहिए, अर्पित करना चाहिए
1: गणेश जी का।
0: गणेश जी को
1: तो बुधवार को और जन्म लेने वाले को गणेश जी का और बहुत विशेष दिवस होते हैं। राजेंद्र जी, बात हो जाता है कि सूरीनाम देश से श्रीमान फेलिक्स यंकी प्रसाद सिंह जी ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बाबा महादेव जी जो ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो उन्हें भी नमस्कार करते हूँ कि जो आप ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं बृहस्पतिवार की ओर। बृहस्पतिवार जो जिसे हम द्वंद्रदाख से जानते हैं राजेंद्र जी,
0: जी
1: तो द्वंद्रदाख के जन्म लेने वाले को और क्या क्या और किस प्रकार से संदेश है, ये तो बस हमारे मास्टर जी राजेंद्र जी ही आपको सुना सकेंगे। दोस्तों,
0: जो द्वंद्रदाख को जन्म लिए है उन लोगों के बारे में, जिन लोगों का जन्म द्वंद्रदाख को हुआ है यानी गुरुवार को हुआ है, गुरुवार मतलब बिफे, वे बुद्धिमान और साहसी होते हैं। ये लोग किसी भी मुश्किल समय का सामना बड़ी ही समझदारी के साथ करते हैं। इन लोगों के मित्र अच्छी संगत वाले होते हैं, मित्रों की ओर से सदैव प्रसन्न रहते हैं। इन लोगों को भाग्य का साथ भी मिलता है। और इनका उपाय क्या है, गुरुवार को चने की दाल बेसन के लड्डू का भोग शिवजी को लगाना चाहिए, ये इन लोगों के लिए उपाय भी है।
1: इसका सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि जो अगर संदेश में ये है कि चने का दाल ना,
0: चने
1: बोलते हैं कौन सी गुगरी ना, यहाँ हम लोग बोलते हैं गुगरी
2: नहीं, चना दूसरा है और चने की दाल दूसरी है, चने से ही चने की दाल बनती है।
1: अच्छा,
0: जो गुगरी होती है उसका छिलका उतार दो और उसका दो टुकड़ा कर दो तो चने की दाल हो जाती है पीली।
1: ऐसा बात है,
0: ऐसा बात,
1: ये तो मुझे पता ही नहीं था।
0: हाँ।
1: तो चलो आगे एक छोटा सा संदेश,
0: छोटा सा एक नगमा फिर संदेश
1: चला देते हैं, पर दोस्ती के बारे में होना चाहिए राजेंद्र।
0: जरूर, वही होगा।

0: किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार। जब किसी की मुस्कुराहट होती है तो निसार तो हो ही जाता है, तो इस प्रकार से मुस्कुराहट होनी चाहिए कि निसार हो जाए। हम बात कर रहे थे अपने कार्यक्रम की कि किस बार को जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसे होता है, तो बात पहुंच गई है शुक्रवार की। शुक्रवार को जन्म लेने वाले लोग, यानी जिस जो व्यक्ति शुक्रवार को जन्म लेता है, वो हंसमुख और बुद्धिमान होते हैं, अपनी बातचीत से दूसरे को प्रभावित करते हैं, सहनशीलता के कारण कठिन समय का सामना भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेते हैं। कला के क्षेत्र में ये लोग खास मुकाम हासिल करते हैं, और मेरा भी जन्म शुक्रवार को ही हुआ है। उपाय है कि हर शुक्रवार को शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाना चाहिए। तो शुक्रवार के व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं, आपने देखा ही है, व्यक्ति भी देखा है और समझा भी है कि किस प्रकार के होते हैं। बात करते हैं शनिवार की। शनिवार को जन्म लेने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। जिन लोगों का जन्म शनिवार को हुआ है, वो एक कृषि, व्यापार या तकनीकी क्षेत्र में, तकनीकी यानी जो नए नए,
1: हाँ, टेक्निकल
0: हाँ
1: जी,
0: उसमें अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। इन्हें छोटी आयु में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जरूरी नहीं कि सबको ही हो, किसी किसी को करना पड़ सकता है सामना छोटी आयु में परेशानियों का। इन लोगों को मित्रता में सावधान रहने की आवश्यकता है, यानी जिससे दोस्ती करते हैं वो थोड़ा सावधान रहें। माता पिता भाई बहनों की ओर से सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, इनको माँ बाप का और भाई बहनों का सुख भी नहीं प्राप्त हो पाता है। उपाय है इनके लिए, हर शनिवार को शनिदेव के नाम पर तेल का दान करें तो इन प्रकार की मुसीबतों से वो बच सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, ये बात हमारी 7 दिनों की हुई, किस बार को कैसे लोग रहे, सबने सुना होगा। अब जो व्यक्ति जिस बार को जन्म लिया, वो व्यक्ति मनन करे कि वो कैसा है, इसके अनुसार है कि नहीं। अगर नहीं है और है तो तार करें यहाँ पे रेडियो में और बताएं कि कैसे हैं। अब हमारी जो सुई घड़ी की है और हमारा जो गीत है सूरीनाम हमारा प्यारा देश, तो सूरीनाम हमारा प्यारा देश जो है गाना, वो बहुत ही समय बताता है कि हमारा समय जो है केवल 10 मिनट रह गया है, गाना बताता है। तो घड़ी नहीं चाहे देखे, सीधा गाना सुने और समय पता लगा सके।
1: जरूर राजेंद्र जी, क्योंकि कार्यक्रम जो सूरीनाम देश से श्रीमान फेलिक्स यंकी प्रसाद सिंह जी भी सुन रहे हैं, तो और हमारे दूसरे स्टूडियो में मैं देख रहा हूँ दूसरा कोलेखा भी तैयार हो चुके हैं और हाथ में कॉफी लेकर के और देख रहे हैं हमारे और इशारा कर रहे हैं। और जो ये बात हो जाता है कि हम वो गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर अपना आखिरी गीत की ओर छलांग लगा देंगे। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम में जो आज हम सब रखे गए और ये सुंदर सुंदर संदेश जिसमें हमारे भाई राजेंद्र जी और जा करके, क्योंकि राजेंद्र जी अभी यहाँ भी संदेश आया है कि शनिवार के दिन जो बाबा महादेव और का जन्म भी हुआ है, तो उन्होंने अपने ओर से भी व्हाट्सएप पर डायरेक्ट लगा दिए हैं कि हमारा जन्म भी हुआ है और जा करके शनिवार के दिन, तो उनके ओर से भी हम सब को अच्छा लगता है कि आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हम गीत की ओर बढ़ेंगे, किस सूरीनाम हमारा प्यारा देश।
0: जरूर

0: सूरीनाम हमारा प्यारा देश तुझ पे मरने से इनकार नहीं। सूरीनाम जो बहुत सारे लोग यहाँ पे सूरीनाम के हैं और सबका प्यारा देश सूरीनाम है और मैं भी चाह रहा हूँ कि सूरीनाम में एक बार जरूर जाऊँ। संजय जी कहते हैं कि सूरीनाम हमारा प्यारा देश, तो कितना प्यारा देश है ये देखना चाहिए ना।
1: राजेंद्र जी जरूर लिफोर्नो आपको जाना है, क्वाटा जाना है, सरमक्का जाना है, निकेरी जाना है, ये सब जगह तो जरूर जाना ही जाना है आपको।
0: हाँ।
1: और कब ये कब होगा ये नहीं पता है, पर
0: होगा जरूर,
1: जरूर होगा, जरूर होगा। और अगले गीत के ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं राजेंद्र जी, तो हाँ। गीत का बोल जो आ जाता है आप ही उसका इंट्रो डिशेयर कीजिए।
0: इंट्रो डिशेयर ये है कि लागी छूटे ना अब तो सनम, मोहम्मद रफी जी ने और लता मंगेशकर जी ने, काली टोपी लाल रुमाल 1959 यानी 1959 में ये गाना और ये फिल्म भी बनी थी, तो चला देते हैं।

0: लागी छूटे ना अब तो सनम, लेकिन बबली जी अब आप इजाजत लेने वाले हैं।
1: हाँ जी, वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
0: बबली जी ने कहा कि वक्त से बढ़कर कोई गुरु नहीं हुआ और विद्या यानी शिक्षा देने से वाला से बढ़कर कोई गुरु नहीं हुआ, तो इस वक्त और गुरु दोनों ही बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको हर समय चाहे संजो के रखना चाहिए।

फिर भी दिल के करीब हूँ। तो जैसे मैं अभी यहाँ हूँ लेकिन रेडियो भारत में भी सुनाई दे रहा है, और अगर मैं भारत में हूँ तो रेडियो तो यहाँ से वहाँ भी सुनाई देगा। तो दूर है लेकिन दिल के करीब है। दूर आजकल के ज़माने में, इस समय में, इंटरनेट का जब से ज़माना आया है, फ़ोन का ज़माना आया, तो कोई दूर कोई कहीं नहीं है। दूर है लेकिन दिल के करीब है। कहीं से बैठ के भी व्यक्ति कहीं बातचीत कर सकता है, वीडियो से देख सकता है। तो इसीलिए सब दूर है लेकिन दिल के करीब ही रहेंगे। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हम जो कार्यक्रम चलाते हैं आगे भी चलाते रहेंगे और सब लोग सुनते रहेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग दिए और बबली आसरा जी, हमारे पैनल के पीछे भाई ये राजेंद्र सिंह जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। ये जरूर कहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। तो बस यही है संदेश। आशा ये रखता हूं कि कुछ न कुछ संदेश आपको प्राप्त हुआ होगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

और गुजरा हुआ जमाना तो कभी तो लौट के नहीं आता है। और नाइटिंगेल लता का ये ओरिजिनल सॉन्ग थी दोस्तों। और इसके बाद आज हम आप लोग को पुराने गीतों की ओर लेकर फिर चलते हैं। और ये गीत जो है बहुत पुराना गीत है, वसंत देसाई का। और सुना जाए ये गीत, जब ये फिल्म चले थे दोस्तों तो मेरा अभी कुछ नाम हो और निशान।

और टीम टीम टीम तारों के गीत चले। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला जोन की ओर। ये भी एक मस्त भरी पुरानी गीत है और ये गीत आप लोग को 1955 का ये जोन है। मोफी के नाम है मुनीम जी, मोफी के नाम है मुनीम जी, जिसमें देवानंद ने काम किया है प्राण के साथ में। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं और किशोर कुमार का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

और इसके बाद हम चलते हैं पद्मश्री मोहम्मद रफी की ओर और आशा भोसले की ओर। एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है और डुएट सूरज। दोस्तों हम चलते हैं, आओ मिल के सुना जाए। मूवी के नाम है सूरज नहीं खती होंदत, मूवी का नाम है सूरज नहीं खती होंदत एंड सेशन सेस्टक का ये सॉन्ग है।

तो दिल के भंवरे करे पुकार, अभी आपको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन पहले लेकर चलते हैं एक बार आता है दिन ऐसा।

और रोज नहीं, अभी आप लोग को हमने सुनाई थी एक गीत, दिल का भंवरे कही पुकारा, अनंत देवानंद का ये सॉन्ग है। इस गीत को लेकर हम और चलते हैं।

दिल का भंवरे करे पुकार। और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं ये गीत दोस्तों देखती होंदत ऐसा सफेर तक का मौफी का नाम है अनमोल घड़ी। अनमोल घड़ी मौसी का नाम है। महमूद खान ने इस फिल्म में डायरेक्टर थे दोस्तों। Toen was ik nog niet eens geboren, ik weet het niet, ik heb deze film ook niet gezien. Maar hamare dosto jo hai yahan pe radio par, wo sab is film dekh chuka hai. Aur humse kaha ki Johnny, jaroor chalana, to hum jaroor chalayenge, aao milkar suna jaye. Ye kalam nahi hai dosto, ye kuch aur hai.

पे हम उड़ जाएंगे। मूवी का नाम है अनमोल घड़ी दोस्तों, और इस फिल्म में इस गीत को गाए हैं शमशान बेगम और सोरेबा अम्बालीवाली। तो ये सब नाम तो हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं सुना है, लेकिन इस मूवी में काम किया है सुरेंद्र नूर जहां सुरैया, सहू राजा अनवरी, मुरत एंड लीला मिश्रा का ये सॉन्ग है दोस्तों। हम फिर एक पुराने गीत की ओर जाते हैं। फिल्म के नाम है जाओ नेगेटिव 125 का ये सॉन्ग है दोस्तों, और इस गीत आओ सुना जाए। दिस इज हेमंत दादा।

Jal. 1952 का ये सॉन्ग है और वो बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, तो हम आपको उस दौर उस यादों की ओर लेकर चलते हैं जिस मूवी के नाम है दीदार। 1951 का ये सॉन्ग है और अगर बचपन में आप किसी से मोहब्बत किया है तो आप इस गीत से उसको या उसकी याद कर सकते हैं।

और बचपन की ये दिन आपको कभी भुलाना नहीं चाहिए दोस्तों। कभी कभी लोग कहते हैं भूल गया है, लेकिन बचपन की मोहब्बत की जो संबंध है वो तुम्हारे साथ चलते हैं। अगला गीत की ओर हम चलते हैं। छोड़ दो हमारी आंचल, क्योंकि जब हमारे आंचल पकड़ेगी तो दुनिया बोलेगा कि सरक के गिर न जाए या कुछ और न दिखा जाए।

करेगा दोस्तों। और किशोर दादा का एक और सॉन्ग हम आप लोग को यहाँ पे सुताएंगे, नाइटिंगेल लता जी, और फिल्म के नाम है निमी, और ये लता नहीं दोस्तों, यानी ये रफी नहीं है, लेकिन नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। उरन खटोला मूवी का नाम है।

0: और रहेगा।
1: और आप लोग जानते हैं कि पुराने गीतों की मजा कुछ और है हमारे जनता। और हम चलते हैं, मीना कुमारी का एक फिल्म है, मीना कुमारी का एक फिल्म मौफी का नाम है, मौसी का नाम है बैजू भौरा। 1952 में एक सुपर हिट फिल्म ये थे। आओ सुना जाए क्या गाते हैं दोस्तों।

का ये सॉन्ग थी। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, महेंद्र कपूर का और आशा जी का ये सॉन्ग है। और दोस्तों ये भी एक ओल्ड एंड गोल्ड पुराना फिल्म का ये सॉन्ग है, और यानी कि मूवी का नाम है पुराना घुमरा। आशा जी एंड महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

ये तो बताओ कि तुम मेरी कौन हो, अगर आपको ये पता होगा कि तुम और हम कौन हैं तो आप जरूर हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 2 0 7 7। हमारा लाइव आप लोग हमें तार कर सकते हैं रेडियो फाउन के माध्यम से। तो हम अगला गीत के ओर चलते हैं। नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है जिंदगी और मौत। 1965 का ये क्लासिक सॉन्ग है।

और दिल लगा कर हम ये समझे मूवी का नाम है जिंदगी और मौत। दोस्तों अगर आप चमेली को जानते होगे तो जरूर आप हमें तार करके बता सकते हैं कि चमेली कौन थे। दोस्तों कौन थे ये चमेली कौन थे? दोस्तों चमेली अगर आप चमेली के जानते नहीं होगे तो इस गीत से आपको पता चलेंगे कि चमेली कौन थे। और है आशा जी और परमा श्री मोहम्मद रफी का ओल्ड हिंदी एवरग्रीन सॉन्ग।

दोस्तों तो एक गीत यहां से है और मूवी के नाम है प्यार किया तो डरना क्या। परमा श्री मोहम्मद रफीका निगत द्रिय सष्टकाये जोंगे।

और जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। मूवी का नाम है प्यार किया तू डरना क्या, लेकिन जो अगर प्यार किया है तो डरना नहीं है, लेकिन झूठ भी मत बोलना, झूठ भी मत बोलना। झूठ बोलने पर सजा मिल सकते हैं। और मूवी का नाम है तीसरी कसम।

झूठ बोलोगे तो आपको तो कहीं जाकर फरखलारिंग देना पड़ेगा, और वो कहां पर जाकर देना पड़ेगा इस गीत ने आपको बताए है। मूवी के नाम थी तीसरी कसम राज कपूर, मध्य मुकेश कहां गया हुआ जोंग है। और उसके बाद तो हम चलते हैं एक और ओल्ड एंड गोल, करोड़ों की चुराने वाला, The Heart of Millions, Mighty Mukesh.

धीरे रे चलो मेरी बांकी रनिया के बाद हम चलते हैं दादा हेमंत कुमार की ओर रे। और दादा हेमंत कुमार भी बहुत बेमिसाल गीत को गाए हैं। मूवी का नाम है 20 साल बाद। 1962 का ये सॉन्ग है दादा हेमंत कुमार।

दोस्तों, आप अपने मूड यानी खुशी के रचयिता खुद है। आपके दिन उतने ही अच्छे हैं जितना आपने उन्हें होने दिया था या होने दिया है। और सफल बनने के लिए प्रयास करना होगा और सफल बने रहने के लिए साझा करना होगा, यानी मिल

भाई बहनों, किसी भी समस्या से भागने से समाधान की दूरी ही बढ़ती है और किसी समस्या से बचने का सबसे आसान तरीका उसे हल करना है, उसे ओपलोस करना चाहिए।

प्यारे प्यारे भाई बहनों, ये मत भूलो कि तनाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं अधिक नष्ट कर सकता है। अक्सर ये हमारी आशा, आस्था और विश्वास को भी खा जाता है। मित्रों, यदि आप जानते हैं कि तनाव स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, खजोंत हेड के लिए ठीक नहीं है, फिर आप तनाव क्यों लेते हैं, तनाव क्यों करते हैं? अनुभव पहले ही बता चुका है मित्रों कि तनाव के कारण कोई समाधान नहीं होता है, कोई अपलोसिंग नहीं होता है। इसीलिए मेरा अनुभव उन सभी से एक अनुरोध है जो तनावग्रस्त हैं कि तनाव आप ना करें। अगर आप थोड़े भी धार्मिक हैं मित्रों, तो इससे कुछ हल नहीं होगा। आप जानते हैं, अपने भगवान से बात करें, विश्वास के साथ बात करें, प्रकृति पर विश्वास करें, प्रभु पर विश्वास करो मित्रों।

दोस्तों, ऐसी दो चीजें हैं जिन्हें आपको भूल जाना चाहिए। आप दूसरों की जो मदद करते हैं और दूसरों ने जो आपको नुकसान पहुंचाया है, ये आपको भूल जाना चाहिए। और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके अंदर अहंकार कम होगा और तनाव भी कम होगा मित्रों। और जितना संभव हो सके केवल अच्छे कर्म करें, फिर बीते हुए कर्मों के बारे में सोचने का समय नहीं होगा, नहीं मिलेगा आपको फिर वो समय। कृपया आप इस बारे में जरा सोचें, विचार कीजिए।

सुख भोगने के लिए स्वर्ग है तथा दुख भोगने के लिए नरक है, और सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर महान आनंद प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य लोक।

धन किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाता, मनुष्य खुद ही धन का गुलाम बनकर अपना पतन कर लेता है।

वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।

ॐ श्री सरस्वती नमस्तुभ्यं वर्दे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सर्वे भवन्तु सुखिना। आप सभी को हार्दिक से स्वागत है इस खूबसूरत दिवस में। यहाँ से उपस्थित हो गई हूँ आपके सेविका सेविका शांता, जो यहाँ से आपका स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा।

अच्छा उम्मीद है कि आप जरूर से खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जो दुखित परिवार है, बीमार है, लाचार है, उनके लिए जरूर से दुआ प्रार्थना है। तो चले यहाँ से आरंभ करने को जा रही हूँ स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम, और आपको लेकर चलते हैं दनाखलाइस कफेन फोर पारक, दनाखलाइस कफेन फोर पारक से आनंद अर्जुन शर्मा। आनंद अर्जुन शर्मा क्रोधांधल बेफे के जरिए से हम सुनेंगे हनुमान चालीसा।

प्रारंभ किया गया है। देना खलाइस गम्फेन फोर पारक से आनंद अर्जुन शर्मा खुरोतांदल बेफे के जरिए से ये सुंदर सा हनुमान चालीसा हमने यहाँ से श्रवण की है। Danachleis café voorpark ze zondag groothandel in groente en fruit. In Kamalik jo hai Sriman Parshuram Mohanlal aur Sriman Parshuram Mohanlal ke jariye se hum sunenge Satyam Shivam aur Sundaram.

नाच रहे हैं डमरू की ताल पर, नाच रहे हैं डमरू की ताल पर शिव शंभू त्रिशूलधारी, त्रिशूलधारी गंगाधर, गंगाधर बाबा महाकाल सर्वेशु।

0: Den Haag Leiscafé in Voorpark is zondag groothandel in groente en fruit in Kamalik Johem. Sriman Parsuram Mohanlal or Inike Jerjesem Nesarvan Kihe Satyam Shivam Sundaram. Den Haag Leiscafé in Voorpark is bouw- en onderhoudsbedrijf in Kamalik Johe Sriman Haridat Rohit Devnarayan or Sriman Haridat Rohit Devnarayan se hum shravan karenge.
1: Hello guys, so aaj hum aaye mandir masti karne ke liye aur ye hamare friends.
2: Hello.
1: Hi.
3: Suniye, mandir mein is tarah ke vastr pehenkar ye sab karna galat hai.
1: Par kyun? Isme kya galat hai?
3: मंदिर का अर्थ होता है मन के अंदर बसे भगवान का ध्यान लगाकर उनकी महिमा का गुणगान करना, इसलिए मर्यादा में रहकर यहाँ की पवित्रता को बरकरार रखना।
1: तो आप ही बता दीजिए
4: कैसे उनकी महिमा गाएं,
5: कैसे उनका ध्यान धरें
6: और कैसे उनका गुणगान करें।

Den Haagse gemeenteraadslid, श्रीमती लेना बाबू राम जी के तरफ से हम यहाँ से श्रवण करेंगे आपका स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में।

0: ये सुंदर सा भजन यहाँ से हम मिलकर और श्रवण कर ली है मेरे सुनने वालों। ना पूछो मेरी पहचान, ना पूछो मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ, भस्म से होता है जिसका सिंघार, मैं उस भोलेनाथ का पुजारी हूँ। देन हाँ से खमीता रासलेट श्रीमती लैन बाबू राम जी के जरिए से ये सुंदर सा भजन हमने मिलकर श्रवण की है। दनाक से श्रीमती लिलियन मोती राम जी की तरफ से हम सभी को एक शुभ दिवस कहते हुए हम चल के श्रवण करें।
1: अरे भाई सब किस्मत का चक्कर है, अपनी जिंदगी में सब परेशान है।
2: चलो आप सबकी परेशानियां दूर करता हूँ।
3: कैसे?
2: अरे आप सबको कहीं लेके चलता हूँ।
4: अरे नहीं मैं नहीं जाऊंगा।
2: अरे ऐसी जगह लेके चलूंगा सबकी परेशानियां दूर हो जाएगी।
4: चलो
5: चलो भाई चलो चलो चलो।

0: अरे वाह,
1: देखा ना, वैसे टेंशन ले रहा।
0: सच में भाई,
1: टेंशन से कुछ नहीं होना, बीमारी होना है बस।
2: इसलिए जिनके नाथ हो स्वयं भोलेनाथ, जिनके नाथ हो स्वयं भोलेनाथ, वो कैसे हुआ अनाथ। सुंदर सा भजन पेश किया गया है धनहाक से श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से। श्रीमती लिलियन मोतीराम, हम सभी को एक शुभ दिवस कहते हैं। श्री नाम अली फॉर नो मैन कंडम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर, ये खूबसूरत दिवस में सुंदर सा भजन।

ही करने, हमारे ही करने हमें ही दिखलाते हैं। जब समय का चक्र घूम कर आता है,

शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस पेश कर रहा है श्री नाम अली फोनो मैन कंडम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर। दिनांक 21 मई 2023 हिंदू बास स्कूल फाहुन फरेनखेन अलखमेन हिंदू अंडरवेस नीदरलैंड के जरिए से सुनेंगे हम सुंदर सा गणेश भजन।

क्या बात है, ये सुंदर सा गणेश भजन यहाँ से हमने मिलकर श्रवण की है, कितने अच्छा लगा ना। चलो खुशियाँ का जाम हो जाए, चलो खुशियों का जाम हो जाए, लेके बप्पा का नाम कुछ अच्छा काम हो जाए। खुशियाँ बांट कर हर जगह, खुशियाँ बांट कर हर जगह, आज का दिन बप्पा का नाम हो जाए। दिनाख मका इसरत नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहोन, हिंदू बास स्कूल फाहोन फरेनखें अलखमेन हिंदू ओंदरवेस नीदरलैंड के जरिए से सुंदर सा गणेश भजन यहाँ से मिलकर हमने श्रवण किए है और आगे आपको लेकर चलते हैं। दिनाख कृत स्रत नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबीन के निर्देशों में श्रद्धा भक्ति के साथ।

सुंदर सुंदर सा गणेश भजन यहाँ से मिलकर श्रवण हमने की है सुनने वालों, और पेश किया गया है परिवार चांगुरबिन, परिवार चांगुरबिन के तरफ से श्रद्धा भक्ति के साथ। और परिवार चांगुरबिन का निवासी है दनहा कुनुतस्त्रात नंबर 10 संस्था हिंदी प्रचार, संस्था हिंदी प्रचार जो चांद परिवार गुरबिन के निर्देश में है। प्रथम पूजनीय भगवान गौरी पुत्र गणेश जी के कृपा से हम सबका दिन शुभ और मंगलमय होवे। रोटरडैम होपफुली टेक्सास वेक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडैम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रैट सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के जरिए से आपिका फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में यहाँ से हम श्रवण करेंगे।

वो मौत देखकर भी हंसते हैं, वो मौत को देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महादेव बसते हैं। सुंदर सा भजन पेश किया गया है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। रोटरडाम होकफ्लिट टेक्सस वेख नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर, संस्था जागृति, संस्था हिंदी सेवा संघ, श्री गंगा माता मंदिर, साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रात ससफेर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री राजकुमार महातम जी के जरिए से। फाहा रेडियो के डायरेक्टरी स्टाफ पर्सोनेल और सभी फ्रेवेल खर्च की तरफ से तोहफा के रूप में

सबका मंगल होए रे, जरूर से सबका मंगल होए रे। जिस समस्या का ना कोई उपाय, जिस समस्या का ना कोई उपाय, उसका हल सिर्फ ओम नमः शिवाय। फाउन रेडियो की डायरेक्टर स्टाफ पर्सनल और सभी सभी फ्री वेलर्स के तरफ से तोहफा के रूप में ये सुंदर सा भजन हम सभी का मंगल होवे, सभी स्पॉन्सर और सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते पेश किया गया है। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम देने सुनने के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और आप अगर इसमें भाग लेना चाहते हो तो जरूर से आप तालुकात कीजिएगा।

सर्वे मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री गणेश। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम यहाँ से आरंभ को करने जा रही हूँ। स्वीकार कीजिए शिविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। आप सभी को हार्दिक से स्वागत है आज इस शुभ की कार्यक्रम में। सभी को बहुत सारे प्यार मिले। दुखित परिवार जो है बीमारे लाचार है उन सभी को सहन शक्ति मिले। ये दिन आपका भी मंगलमय होवे शुभमय होवे। यहाँ से स्पॉन्सर कार्यक्रम शुरुआत को करने जा रही हूँ और आपको हम तुरंत तुरंत यहाँ से लेकर सूरीनाम को लेकर जाते हैं। सूरीनाम फॉर नो मैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक से, श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से, श्री पंडित सुभाष महावीर इस ठंडी इस खूबसूरत दिवस में भजन माला कार्यक्रम में शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस कहते हुए हनुमान चालीसा।

जय जय राम, जय जय राम, स्वीकार कीजिए आज के सुबह की भी जय जय श्री राम। रात गुजरी फिर महकती सुबह आई, हर सुबह आपका चेहरे पर नई मुस्कुराहट लाई। खुश कुछ इस तरह आपकी, कुछ इस तरह आपकी दुनिया हो कि खुशियां से भर जाए। हनुमान चालीसा यहाँ पे पेश किया गया है। श्री नाम अलिफोनो मैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक्स है, श्री भक्त राजीव पार्वती मंदिर से, श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से।

0: है बाबूजी?
1: जय सिंह, ये आवाज किसकी है?
0: इसी गांव की लड़की है, रोज सुबह गाना गाकर गांव को जगाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर ये गाना ना गाए तो
1: शायद सूरज उदय नहीं होगा। नाम क्या है इसका?
0: रूपा।
1: रूपा, जिसकी आवाज इतनी सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर होगा।

सत्यम शिवम सुंदरम, बदलता तो हर जीव है, बदलता तो हर जीव है, और जो ना बदले वही शिव है। पेश किया गया है धनाखलास कैफे फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा ख्रोत हैंडल पेफे के जरिए से। Den Haag Les Café voor Park is zondag groothandel in groente en fruit. In Kamalik Johe, Sriman Parshuram Mohanlal. Of Sriman Parshuram Mohanlal, ke taraf se hum sunenge.

जय जय हो गजानन जी। सुंदर सा गणेश भजन आपके लिए पेश किया गया है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से और आप ही का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम यहाँ से प्रस्तुत किया जाता है। प्रथम पूजनीय भगवान गौरी पुत्र गणेश जी की कृपा हम सब पर बने रहे, हम सबको एक शुभमय एक मंगलमय दिवस भी प्रस्तुत हुए। पेश किया गया है देनाख लेस कॉफिन फोर पार्क से सुंदर ग्रोथ हैंडल एन ग्रोथ एन फ्रॉइड। इनका मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल। आपको एक बार फिर हम लेकर चलते हैं देन हाखलाइस कफेन फोर पार्क से। इस बार है बाव एंड ओनर हाउस बद्रेव और इनका मालिक है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण और श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण के तरफ से।

कवि प्रदीप से हमने यहाँ पर श्रवण की है कि कोई लाख करे चतुराई बल के कर्म का लिखा जो है वो मिटेगा नहीं मेरे भाई। ये सुंदर सा भजन पेश किया गया है दनाखलेस कफिन फोर पार्क से बाव एंड ऑनर हाउस बदरेव, बाव एंड ऑनर हाउस बदरेव जो श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण के निर्देश में। अच्छे ख्वाबों के साथ सोना और नई नई उम्मीदों के साथ उठना, सुख सुबह जैसे होता है मांगने पर नहीं पर मेरे दोस्तों जागने पर मिलता है। दनहाक से खमीता राजलित श्रीमती लेना बाबू राम जी की तरफ से।

अवश्य अवश्य अवश्य, नियत अगर अच्छी है तो घर में ही मथुरा और काशी है। जैसे कहते कि भी ले लो दुआएं माँ बाप की, माँ के चरणों में, माँ बाप के चरणों में ही तो तीरथ ही।

अति सुंदर भजन आपके लिए प्रस्तुत किया गया है आप ही का स्पॉन्सर नहीं बल्कि भजन कार्यक्रम में जो यहाँ से आप श्रवण कर रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। और कहते हैं कि जैसे जैसे सितारों के साथ आकाश है, सितारों जैसे सितारों के साथ आकाश आकाश है, रिश्तों के साथ विश्वास है, सच्चे मन से पलकों को बंद करके देखो, सच्चे मन से पलकों को बंद करके तो देखो, भगवान भगवान हर पल हमारे साथ है।

बात सही है, माँ के बराबर, माँ बाप के बराबर कोई नहीं है। जितना प्यार माँ बाप अपने बच्चे से करते हैं, अन्य मैं नहीं सोचती कि कोई ऐसा प्यार अपने बच्चों के साथ कर पाएगी। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, सुंदर देवी भजन आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। जिस समस्या का हल समझ में ना आए तो दो मेरे दोस्त, जिस समस्या का हल समझ में ना आए तो उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यकीनन मानिए कि परिणाम जो उसका होगा वो अच्छा ही होगा।

माँ सरस्वती के श्री चरणों में अवश्य प्रणाम है कि मैया तेरी जय जयकार हो। सूर्य नारायण से यही प्रार्थना है मेरे प्यारे सुनने वालों कि उनका आशीर्वाद हम सब के जीवन में रहे, हम सब आरोग्य रहे, आत्मा बल मिले और तेज भर दे। यही प्रार्थना है कि हर कार्य में उज्जवल होवे, हर कार्य जो है उज्जवल होवे और हमें जो है उसे सफलता मिले।

अवश्य जब राधे राधे। 11 मिनट बाकी है 8 बजने में मेरे प्यारे सुनने वालों, सुबह की कार्यक्रम आपके लिए भजन माला कार्यक्रम जो हम इसमें गोटा लगाए और अपना जीवन जो है उसे आज एक अच्छा मोड़ दे। मैं हेल फेल पॉजिटिव इनर्शी।

सुंदर महादेवन के भजन, श्री भोलेनाथ के भजन हमने श्रवण की है आज भक्ति प्रोग्राम में। और कहते हैं जब ठोकर खा कर भी ना गिरे तो समझ जाना कि बाबा भोलेनाथ आपका इष्ट ने आपका हाथ पकड़ रखा है। करोड़ों पर भारी है मेरे दोस्त की, करोड़ों पर भारी है एक भस्मधारी, करोड़ों पर भारी है एक ही भस्मधारी भोलेनाथ जी। नमः।

0: voor eigen inwoners. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is Vahon Hindustani Radio.
2: En het is daadwerkelijk Vahon Hindustani Radio. Jis per aap or mij tjoen he aaj ke program me. आपको यहाँ से बहुत प्यार के साथ एक बार फिर हर बार कहूँगी स्वागत है, क्योंकि हर बार कहने में बहुत अच्छा लगता है और हर बार एक नया बार होता है, हर पल एक नया पल होता है। तो यहाँ से आपको फिर से एक बार स्वागत है, स्वागत है। और इसी के साथ चलते हैं सुनने के लिए, बड़े अच्छे लगते हो।

0: सचमुच डैडी डैडी अमित कुमार अपना पापा को बुला रहे किशोर कुमार जी की बाप बेटा का ये सुंदर सा गीत यहाँ से सुने हम। किसी से इतना भी ना जोड़ना, किसी से इतना भी ना जोड़ना मेरे दोस्त कि खुद की परछाई खो जाए। उसकी खुशी में जीते जी अपना सुकून ही सो जाए। किसी से इतना भी ना जोड़ना कि खुद की परछाई खो जाए, और उसकी खुशी में जीते जी अपना सुकून ही सो जाए। लोग मिलते हैं पल भर के लिए, लोग मिलते हैं पल भर के लिए, और यादें लंबी छोड़ जाता है। जो दिल के करीब होता है अक्सर, हाँ मेरे दोस्त, कि जो दिल के करीब होता है अक्सर वही सबसे ज़्यादा तोड़ जाता है।
1: या का। गाओ बच्चों, तुम भी मेरे साथ गाओ।

Yes, he is a hero and you are also a hero, not a zero. मोहम्मद अजीज अलीसा चिनाय और अमित कुमार जी की आवाज में ही इज अ हीरो एंड वी आर द हीरो ऑफ मेट अ फ्रिस ब्लैक मैन लिव मेन्स. Vandaag hoeft niet perfect te zijn. Alleen een stap vooruit, dat telt. Neem tijd voor een goed ontbijt. En glimlach, een glimlach en een vriendelijk woord. Elk nieuwe dag geeft een nieuwe kans om iets moois te doen. Maak er een fijne moment, een fijne dag of een fijne avond. Een fijne moment van. मत करो किसी से उम्मीद, हर किसी के अपनी दुनिया है. मत करो किसी से उम्मीद क्योंकि हर किसी की अपनी ही दुनिया है. कोई कितना भी अपना हो, ये बात सही है सुनो तो, कि कोई कितना भी अपना हो पहला अपना ही देखता है.

0: आ गया है आकाश में, तो यहाँ से आपके तरफ से, मेरी तरफ से, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के पूरा क्रू के तरफ से श्री पंडित राजकुमार महात्म जी को स्वागत है आकाश में। आप है पंडित जी, नमस्कार हो।
1: नमस्कार, धन्यवाद जी। हरि ओम महादेव नारायण परम ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायणो परो देवा सर्वनारायण सदाम ओम नीलम भुजिश्यामल कोमलंगम सीता समारूपित्वाम भागम पाणु महासायिक चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। हरि ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः स्वासित्राय च मुक्षुक स्वरूप ईश्वरु को नमस्कार। संसार सुख देने वालों प्रभु को नमस्कार। कल्याण करने वालों प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वालों प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार और अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के चैनल जहां तक हमारा आवाज पहुंचे आप सभी को जागृत आयु मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीता राम पहुंचे। खास करके रेडियो फान को जो मालिक है मैं उनके भूरी भी धन्यवाद दे रहा जो समय प्रदान किया धर प्रचार करने के लिए। हम अभी कितना ले रहे थे जहां प्रसन्नता जी ने रेडियो फान को माध्यम से आप कितने अच्छे ढंग से सेवा कर रहे थे उनको मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। आकाशवाणी के सुनने वाले कुछ विचार किया जाए, इस शरीर क्यों भगवान हमें दिया है, हमें क्या

लकड़ियों के घिसते होगे ना, तो उसे उसे अग्नि उत्पन्न होती है। अब टूटी भाषा में कहूं, हम आप दो लकड़ी करेगे ना, तो उसमें क्या निकलेगा? उसमें अग्नि उत्पन्न होगा। जब तुम दही का मंथन करते हो ना, तभी उससे मक्खन निकलता है। जब तुम इस सृष्टि की छिपे हुए रहस्य और भेदों को जानने के प्रयत्न करोगे, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि राम का मधुर नाम स्वयं ही वो तत्व है। आजकल अधिकांश लोग अपना समय, अपनी शक्ति और अपने सारे प्रयत्न शारीरिक सुख की प्राप्ति में लगाते हैं। संसारिक सुख को प्राप्त करने में इतने कष्ट को उठाने के बाद अंत में उन्हें मिलता क्या है? मनुष्य इस प्रश्न का समुचित उत्तर आज तक नहीं दे सका है। हे मानव, प्रातः से संध्या तक तो अपना सारा समय जीव परजन में निकाल लेते हैं, और इस प्रकार तू अपने सारे जीवन को नष्ट कर रहा है, तो उस परम पिता को भूल रहा है। इस प्रकार के जीवन से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। हे मानव, हे आकाशवाणी के सुनने वालों, इस तत्व पर विचार कर जीवन की प्राप्ति इस दोष कोण को कारण तू अपने अमूल्य समय को व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है। आखिर ये जीवन किस लिए है? ये प्रश्न, ये जीवन किस लिए है? इसका लक्ष्य क्या है? मानव जीवन ऐसा अमूल्य उपहार पाकर यदि तू इसका उपयोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं करता, वास्तव में यदि तू अपने जीवन के ध्येय को ही भूल देता है, यानी भुला देता है, तो ऐसा पवित्र उपहार पाने के लाभ ही क्या हुआ? जब तुम ईश्वर को निरंतर नाम स्मरण करते हो, तो उसके चरण कमल तुम्हारे हृदय पर सदैव के लिए प्राप्त हो जाते हैं, यानी हो जाते हैं। किंतु यदि तुम भगवान का नाम नहीं लेते, तो तुम्हें अत्यंत कुटिल और चलाक बनकर अपना समय नष्ट करते हो। व्यक्ति को चाहिए कि अपने हृदय को मधुर और कोमल बनाओ। निरंतर हर नाम सुमरण से ही ये संभव है। इसके लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। राम नाम संकीर्तन के लिए किस मार्ग को अपनाया जाए, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्रेम पूर्ण हृदय से प्रभु को नाम जपोगे, तो आपको पूर्ण पावन दिव्य स्वरूप मधुर प्रेम के दर्शन अवश्य होगा। परमात्मा, हम वहां भी जानते हैं ना, परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और कण कण में रमने वाले हैं। ऐसे कोई स्थल नहीं जहां ईश्वर ना हो। अतः राम नाम लेने के लिए किसी विशेष समय अथवा विशेष स्थान खोजने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का नाम तो कभी भी और कहीं भी लिया जा सकता है। हरि के नाम में जो पावन है, हरि नाम में जो पावनता है, जो दिव्य है, इसके कारण का पता लगाना चाहिए। वेद अनंत है ना, उनमें पारंगत होना असंभव है। इन आनंद वेदों भगवान से उपनिषद की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उन्हें वेदांत की संज्ञा दी गई है। भागवत गीता से भी उपनिषद कहा गया है, नहीं ऐसा प्रमाण है। भागवत गीता से भी उपनिषदों का निचोड़ है। ये हमें सुलभ है, इसलिए कि हम जीवन में आध्यात्मिक
को

अपनाए, किंतु लोग तो आज इस पवित्र ग्रंथ को, श्री भागवत गीता को, उसको बहुत ध्यान नहीं देते हैं। इस पवित्र नाम के उच्चारण हेतु और उस परम सिद्ध को प्राप्त करने के लिए गोपिया भगवान कृष्ण की नाम पर क्या कहा गया है, गोपिया भगवान कृष्ण के नाना प्रकार से प्रार्थना करने लगी। उन्हें प्रार्थना की, हे कृष्ण, यदि लोग तुम्हारी मधुर नाम का भजन नहीं करते तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। समय कहा गया, समय भाव के कारण संभव है तुम उपनिषदों का अध्ययन न कर सको। उपनिषदों की तुलना एक सधन वंश की जा सकती है। जब तुम किसी धनों में से प्रवेश करते हो तो क्या होते हैं, करते हो तो सकता है कि तुम भ्रमित हो जाओ और अपने लक्ष्य तक ना पहुंच सको। वेद सत्य प्रमाण है, वे विष्णु स्वरूप हैं। इन विष्णु भगवान के सीमा नहीं बांधी जा सकती है। दूसरे शब्द में वेदों का ज्ञान अथवा जिसे समझना हर एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। फिर गीता को लीजिए, गीता कितनी अनुपम और ग्रंथ है। हम इसकी महत्व को जानने को प्रयास नहीं करते, ये हमें स्वयं भगवान से प्राप्त हुआ है, ताकि हमें इसके बदलाए मार्ग पर चलो। तत्व को चिंता करो, भगवान की महिमा का सुमरण करो तथा उसे प्राप्त करो। हम लोग बजाय इस और ध्यान देने के केवल उसके मंत्रवर्त प्रयाण में अपना समय खो रहा है। आकाशवाणी के सुनने वाले, हरि का पवित्र नाम ही गीता का सार है। इसके उच्चारण और अत्यंत सरल, अत्यंत मधुर और अत्यंत सुलभ है। यदि तुम किसी एकांत स्थल पर बैठ करके हरि नाम का सुमरण करने लगो तो तुम्हारे हृदय का अत्यंत आनंद से भर जाएगा। यदि मधुर तुम्हें किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता। नारद सूरदास मेरा सुरभाई की सारी साधना के केंद्र ही प्रभु का मधुर नाम रहा है। तो आकाशवाणी के सुनने वाले, हम आपके दिखाएं कि इस युग में जो है, श्री भगवान के नाम लेकर के हम भाव सागर पार कर सकते हैं। आकाशवाणी के सुनने वालों, ज्यादा न कहते हुए युवानी द्वारा अपना पौरुष विराम करने जा रहा हूं। हमेशा मैं कहता हूं ना, कौन बचा है, कौन बचेगा, वो किसका माल खजाना है, दुनिया थी, दुनिया रहकर पंछुड़ जाना है, पंछी कब उड़ेगा, हम आप नहीं जानते हैं। हरि ओम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदु भाग। हरि ओम, शांति शांति शांति, हरि ओम।

यहाँ से हमने श्रवण की है श्री पंडित राजकुमार महात्म जी के मुखारविंद से सुंदर सा कथा। उनको दिल से धन्यवाद किया जाता है जो अपना मूल्य वक्त निकाल कर और आए हैं, रेडियो फाउन पे अपना सेवा प्रदान की है। धन्यवाद किया जाता है। एक शुभ दिन आप सभी को।

ये सुंदर सा गजल गजल पेश किया गया है मेहंदी हसन जी के आवाज में। फिल्म का नाम दो राहा। आपको प्यार भरा एक खुशियां भरा दिन हो,

मुकेश जी के आवास में फिल्म का नाम मिलाप और ये फिल्म 1983 फंतख में पिक्चराइज किया गया है। कलाकार इसमें शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय जी।

चलम प्यासा से ये सुंदर गीत आपके लिए पेश किया गया मेरे प्यारे सुनने वालों हेमंत कुमार जी के आवाज में। जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार को प्यार मिला।

गीत को सुनकर धुन को सुनकर जरूर से आप झूम जाते होंगे। तुम हसीन मैं जवान नेहती सैफत के सुंदर सा पिक्चराइज किया फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र जी हेमा मालिनी अपना कला दिखाए हैं। दिल छू जाते हैं अगर हम कहते हैं धर्मेंद्र जी।

0: किशोर जी और लता जी सुना दी हम के दाल और रोटी खाओ और जरूर से प्रभु का नाम गाओ, काम करते चलो और नाम जपते चलो। फिल्म का नाम ज्वार भाटा 1973 तक में ये पिक्चराइज किया गया।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए एक रास्ता दो राही, फिल्म का नाम राम बलराम।

forever, forever, forever Indian temptation, क्या यही प्यार है? जी मेरे प्यारे सुनने वालों, हाँ यही प्यार है जो आप रेडियो फाउन को फॉलो करते हैं, और क्या चाहिए।

Jee, lieve luisteraars, het will be Kasam se forever and ever. आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे सुनिए, और क्या पता होना चाहिए मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ.

में श्रवण कर ली है आज के प्रोग्राम में। वारम क्रैग ये कोर्ट्स, वारम क्रैग ये कोर्ट्स, सिंपल उत्लेख आपके लिए यहाँ से है।

इंडियन टेम्पटेशन फॉर यू वेम डमड़ी जारे जमाने में मौसम दीवाने में है ना आपके लिए आपिका फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से स्पेशल स्पेशल स्पेशल यादगार आपके लिए।

दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। सुना दी हमको नजीम और उमर वागित हुसैन। चलते हैं सुनते हैं इस बार फिर है उमर वागित हुसैन की आवाज में।

बिक जाएंगे, बिक जाएगा माटी के मोल। बस अच्छे अच्छे यादगार जो है वो रह जाएगा, बुरा जो करोगे तो वो भी रह जाएगा।

एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। और खास बात ये है, ये म्यूजिक जो आपने सुने ये गीत में, ये म्यूजिक दिया है ज्वाला जी। कितना अच्छा बात है ना।

फिल्म नीलकमल नीलकमल रफी जी के गाया हुआ गीत कवर किया गया है निजाम वागिद हुसैन। निजाम वागिद हुसैन के आवाज में द पेंट एक्सक्लूसिव फॉर्मेट सी।

जिंदगी है तू, ये बात मैं दावा के साथ कह सकती हूँ, ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझसा ना कोई है और ना कोई होगा। और ये बात भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हाँ कि आप सा ना कोई है और ना आगे में कोई होगा। एक बार फिर नौ जो बेन नौतियाल की आवाज़ में।

रात तक कट गए, सुबह हो गए और यहाँ पर हम भी रात के बाद सुबह आते हैं, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद रात फिर हो जाते हैं।

भी एक सुंदर शब्द है कि जहाँ जिसका दाना रहता है जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। इस बार हम सुनेंगे, देखे तो अभिजीत भट्टाचार्य के आवाज में। कि चलने लगी है हवाएं

अभिजीत भट्टाचार्य के आवाज़ में हम यहाँ और मिलकर सुने हैं। कितनी खूबसूरत से गाए हैं कि चलने लगी है हवाएं, वाकई में हवाएं भी चल रहा है। और हमारे इंस्ट्रूमेंटल को क्या हुआ, आ गए इंस्ट्रूमेंटल तो आ गया। सुनो बोलो, दो लाइन के शब्द हैं यहाँ पर, कितनी उसमें बातें हैं जो हमको छू जाते हैं और वो भी हमको भी ज्ञान की रोशनी भी दे देते हैं। तो ऐसे दो लाइन का ये लिखा हुआ है कि अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें। अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं यानी कि यूसेल्फ, सिक्स सेल्फ, अपने अंदर के अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है।

हम यहाँ से सुने हैगा कुमार शानू के आवाज में। हाँ, और कुमार शानू ये फरमाए थे कि चोरी चोरी दिल तेरा हम चुराएंगे। क्या बात है। जिंदगी आईने की तरह, जिंदगी आईने की तरह है, आईना यानी कि स्पीकर शीशा। जिंदगी आईने की तरह है, ये मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे।

यहाँ से एक बार फिर हम और आप सुनेंगे कुमार शानू की आवाज़ में, कुमार दा की आवाज़ में। चुन से तो मालूम हो गया कि इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगी।

रोमांटिक गीत जो कुमार शानू जी ने हमको सुनाए हैं कि इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगी।

इश्क की खनक, उसके इश्क की खनक मेरी चूड़ियों में खनकती है। उसके एहसासों की महक, उसके एहसासों की महक मेरे रूह में महकती है। चाहे कितना ही छिपा लूं, चाहे कितना ही छिपा लूं, आँखों में कहानियाँ झलकती है।

और यहाँ से आपको हम एक बार फिर लेकर चलते हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में सुनने के लिए, और क्या ये फरमाएगा तो हम यहाँ साथ में मिलकर सुनेंगे, मेरे को भी खबर नहीं है।

कुछ लम्हों की ज़िंदगी है, कुछ लम्हों की ज़िंदगी है, जी लो इसे खुश नसीबों की जैसे। हाँ सुनने वालों दोस्तों भाई बहनों, जी लो इस लम्हों को खुश नसीबों की जैसे।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा एक बार फिर से राम राम नमस्कार, प्यार भरे राम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। हमारा प्रोग्राम आप लोग हर शनिवार यानी कि हर शुक्रवार को और मंगलवार को सुन सकते हैं। तो हम तुरंत चलते हैं सूरीनाम के ओर, सूरीनाम के ओर हम

बात फन बुस्कुलकिंग के बारे में बहुत लंबा चौड़ा बात हुआ है। ओएम ने कागज पठाए थे तीन रोज तीन लोग को स्टार्ट फन बुस्कुलकिंग में और यानी कि बुस्कुलक करने को वो है समोहर जो और साथ साथ हुफ्द्रांत और नूर मोहम्मद। तो इसके बारे में कितने लोग है कि जो देना में पॉजिटिव यानी कि खरोत दिल से यानी कि स्टेम करी से कि सबके माख ओ एम को ऑन द सुख करे के और एक दो तीन लोग थे जो यानी कि कहा था कि चोरन के बचाओ चोर लोग को ना चाहेंगे सजा मिले के तो वो भी बात है। एनडीपी के लोग कोई थे जो कहा था नहीं हुफ्द्रांत को नहीं चाहेंगे और सेल्फ सोमोहार जो ब्रोंतो को भी ना सेल्फ ब्रोंतो अपने आप को टेकन किया था कि मुझे स्टार बस्कुल में करो हम अपना सच्चाई रेक्टर को बनाना बताना चाहते हैं। स्टार फैन बस्कुल के मतलब ये नहीं है कि आपको सजा मिल गया है वो देना को सिर्फ स्टेमिंग मांगा है कि तीन लोग को हम ओएम ऑन सुख कर सकेला। बस इतने में भाई कितने लोग हैं जो पार्लियामेंट छोड़ के भाग गए थे कि मुझे नहीं करना है स्टेम की हाँ या ना। इसमें सबसे बड़ा लोग जो है सबसे बड़ा आदमी जो देना के फोर्स इतर है और वो है अधीन भाग गया था भैया और अपना हथौड़ी दे दिया था ऑफर ऑफर दे दिया था दूसर का वार नहीं मन फोर्स इतर का। तो इसके बारे में एनपीएस का और डिफेंसी मिनिस्टर रोनाल्ड आसन कहा है कि देना फोर्स इतर अश्विन अधीन के बोले रसेन फरकेर थीफ का हंडल दौड़ते ऑन होडन फॉर स्टेमिंग द साल तल ओपन बाय एंड स्टार फॉर बस्कुल स्टेलिंग फॉर द थ्री मेंशन। तो ये बात आसन ने कहा है और डिफेंसी मिनिस्टर कि तू सबसे बड़कुआ बाटे देना फोर्स इतर बाटे और तू कुर्सी छोड़ के चल गए ले बाटे कि हमार ऊपर कोई उंगली ना रखाई कि हम बुल्ली बाटी कि चोर के पकड़ या चोर के छोड़। तो चोर के चाहे पकड़े के भैया लोन मौसी लोन कि चोर लोग के चाहेगा बचावे के तो अधीन छोड़ के कुर्सी चल गए रहा और कितना लोग उसमें रहा जो चोर के बचाई से मखरूत देश देना के लोग जो था वो कहना इस सबके स्टाफ फन बस्कुल लखें के चाहेगा ऑन द सुख करे के हम लोग थोड़ा बाटे यहाँ पे रेख्तर रेख्तर बपाल करेगा कि के एमा बदमाशी करी से के ना। तो आसन बोले हैगा एनडीपी बोले हरदम बोले हम मांगेला फर्निविंग के हम मांगेला करप्शी बस्ट्राइड करे के एंड दिस हैड ओ मुबारक मिनिस्टर श्री नाम वो ऑन अ फंकल के फन रेक्टर आलो रेमतो के चाहे अनबीट करे के और बोले हैगा रेक्टर बपाल करी कि सबन फ्राइक्स प्रूव कहे कि ना और बोले ये खाद फॉर द फर्निविंग एंड का बोले हैगा आसन बोले है और बोले हैगा तू करप्शी मांगे बस ट्राई ना करे और बोले यहाँ तो मांगे हैगा वी ऑस्कुलर वॉर दान फ्राइक स्टेल से आसन को प्रोग्राम में अधीन खाफ इन से ओवर वीकिंग अंडर बो ओर्डलिंग फॉर इंस्टॉल फन बस्कुल दिन स्टेलिंग बसेट मुसेन ओपन फॉर लून द अंडरसुक और बोले एन अन सोरोफिल्लक अफोगन ओर्डील बोले तब उकरर बोले सोरोफिल्लक बोले ची यू ना रहा। तो एक बारे में आसन बोले है बोले और बासठ फन बस के बारह मात्रियाल कौन है नित ऊपर तो एक कौन दन बैठ फलदून द वास फलदून द अन मास स्टाफ दी द वेट फोर्स क्रेफ फन पॉलिटिकल बस्तियों का अफेकिंग आसन फेंट है फॉर ऑल टूरिस्ट टैलेंट कि सोमो हार्जो दी इन सेन ओगन सो फील बलूफन इस गवेस अल पार्लियामेंटारियर नु इन सो वन सिचुएशन इस कोमेंट द फरकेरन एंड आन कैक टेकन अ मोगलिक इन फर्सीगरिंग स्टेलिंग जो हरदम सोमो हार्जो पॉल सोमो हार्जो अपरे के क्लिंग बॉय बोलत रहा बड़का बात रहा और खुद आ जाए के और वो फंस गए हैं। तो ये सब बात है दोस्तों जो आउटवन मिनिस्टर आसन ने बताई है।
तो हमारे यारो हम चलते भैया तीन डाकू के ओर भैया इसब ओतो पे जात रहा भाई, ओतो पे जात रहा। और देखे एगो ई बाइकर बैसगिरी वाला जा है 8 तारीख के बाद थे मौसी लोन। तो अभी देखे जा है भैया बस इसब का करी से ओतो ले के बैसगिरिया के क्लेम रहे करी से भैया बैसगिरिया के और कटलीस निकार के गैला ओके रूफ करे भाई, गैला ओके बैसगिरिया वाला के रूफ करे। और उतरे में स्कौतु ओसी से आवत रहा जे देखी सिटुवसिया, तो स्कौतु का करी से बस रुकल भाई ये लुंडवन जे देखी से ओतो हुआ भागल है ओतो लेके भाई। देखे सिपाही आवे है भगल है भैया क्वाटा के सिपाही ओके दौराई से भैया और जाय ओके क्लेम रहे करी से ओतुआ के जाय के क्लेम रहे करी से गा। और आगे से चोरवन बैसगिरिया के क्लेम रहे कर ले रहा और का बोले कटली से के भरूफ करत रहा। और बोले तू न फरदख्त पुलिस के देखी से इसे भगल है ओतो लेके और सिपाही जाय के अब उल्टा ओतुआ के क्लेम करी से चार्ल्स ब्यूरक में भैया चार्ल्स ब्यूरक में जाय ओके क्लेम करी से। और बोले ऐसे लगते होते फान फिंदर ऑन द क्वार्टर वे क्लेम खरीदन ओ मां गाड़ी में पाई से भैया कपशोंस तू जाने मुड़िया बजोन सब हम पहले रे करिया स्वार्थ खसेक्स मास्कर 3 कटलीस पाई से द आन खतरोफन खुदरन एंड फुर्तोइखन सब पाई से दोस्तों। और तीनों चोरन के तीनों लुटेरा के सिपाही गिरफ्तार कर लीसेगा और बोलीसेगा जोन ई बाई करवा रहा जेके सब रूफ कलर ओके चाहे सिपाही में मेल्द करेगे। उपमार मिनिस्टर फॉर सीक्रेट स्टेल अंडरसुक दूर फोर। तो भैया देखो क्या हुए है बैसगिरी चलावे है और जाए के देख रूफर तो के बैसगिरियो वाल के ना छोड़े बहुत रूफ हुए भैया सरनाम देश में। अभी और बात आप लोग को रूफ के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। रूफ बहुत ज़्यादा देश में हुए हैं लेकिन आप लोग को हम और यहाँ हमारा भैया हनीश मनोरथ बोले हैं वो रैक गोते क्यू। अब देखो ये तुवेंदार तक 11 के सिपाही भाई ई और एकर भाई गए लहा तेल भरे यानी कि कोई दुकान के आगे रहा सनिचर के बात है न्यू ईयर का फोंदो वेक में। और बोले तेर होकते आदित नोख्त वेक इन रिसोर्ट लतूर और वहां पे बताई गई है वहाँ पे बताई सब दो भाई एगो सिपाही रहा और ओकर भाई भी रहा सुपर मार्केट के आगे पर गाड़ी पर केल कर ले रहा। और एगो दूसर ओतो आयल है बस इस सबके पीछे के बम्पर पे मार दे इसे तो अब ये सिपाही रहा जेकर गाड़ी मारी से पुलिस अमतना रहा तो अंदर तक यार थे जे गए है ओकर ओतो पपीरा मांगे हैं बस लगल इसे लड़े स्कौतुआ से भगल है छोड़ के ओतो हुआ तो स्कौतुआ लोस स्कोत दागी से भैया कि रुक जा ना भाग बस यू आयल है तुरुक बस स्कौतुआ के पिस्तौल वे छीन ले से दोस्तों। लड़ाई फड़ाई में स्कौतुआ के पिस्तौल उल्वे छीन ले से और छीन के भगल है तो इस सब स्कूतों ओके दौराई से इस स्कूतों तो इंदर तक यार वाला। और भैया जब दौराई से तो ओही के सिपाहिया के पिस्तौल जो छीने रहा बस ओही में से चलते ओ तो में लगल सिपाहिया के दागे लगल दागे भैया यहां बताओ द पुलिस मान से तो अख्तर फोल्किंग मारवेर दार बे में से एक दिस वाफन बस कोतन और लगल एकर पेट में भाई एकर रेखतर बीन में लगल है राखत एरस्त खवन सेन ब्रूर ब्लीफ सेन ब्रूर ब्लीफ ऑन खदेत ओके ना लगल है। और एक के सबन ना है स्कित इन रेडन फरदख्तन हीरा वेख में ही सब घुस गए हैगा फरदख्तों जो दागे रहा सिपाही सखवा अंदर सुख करे दोस्तों। तो बताओ सिपाही यदि स्वामी फेल रखना है तो भला हमारा जनता कैसे वहां पर फेल रहेगा। अब देखो आप लोग जानो हैं एनडीपी के शैन फांदर सान भैया हाँ कैबिनेट के प्रेसिडेंट रहा बाउटर्स के इन्हें एनडीपी के शैन फांदर संग तो शैन फांदर संग भैया बोली से बोले है जब कोवालिची है तो कोवालिची एनडीपी
ठीक है, तो बोले जितना इक्वन प्रत्यवन है जिन क्वालिटी में छोटा छोटा से इतने आयल है, बोले ओके चाहे सब एनडीपी के बात सुने की वन एनडीपी चोर के बचावे है, तो बोले तू लोग के भी चाहेगा चोर वन के बचावे के वन लोग क्वालिटी में बांटे या बोले हेड कान एर बे हम नित इन दत क्वालिटी में फिर इन दर तक से इतल मुझे ही om besluiten te nemen. En coalitie is volgens hem juist nodig om cruciale besluiten te steunen, maar niet voor criminele mensen. Als OM namelijk dit vraagt, moet iedereen namelijk tegen de corruptie zijn. Ori Lim FM met Boli Sega van de San NDPK dat meerderheid van de zetel heeft en dat alle partijen zich bij de cruciale aangelegenheden moet neerleggen. Bolle, uw bos is den visie. Bolle want die onthoudbaar al dus gewezen kabinet-directeur en de NDP ke toi bhiyaloon isa bolle corruptie bachai o corrupte linden kise bachawe he hey en dit te stellen dat partijen niet altijd hun eigen standpunt kunnen doordrukken, daarom zitten zij juist in een coalitie van de stand stel dat de dergelijke zaken binnen de coalitie de coalitie kebaatje nee, van de stand ziet de samenwerking tussen NDP en de VHP wel zitten, mis daar harde afspraken aan het grondslag liggen tot dus toe ja, per toe dekse ko he janta bhi dekhe he Ki NDP is niet voor corruptiebestrijding mensen, ze zijn namelijk de hoofddraad namelijk te gaan verdedigen ki oké tulo na pakkolo bhaiya to je hamar desh ke looti se oi kise bachave hamar janta हमारे मीठा मीठा जनता ना देख पावे बिचारन और उस सब के छोटा छोटा पकेता कैर में भरवाए बा आ जाए के इस सब के स्टेम करके बैठाई से वार्डन इस देश में से द करप्ट आने फर्दीद हसैन एंड अधीन इस एनडीपी दी इज गोन weggelopen van zijn stoel en heeft meneer de andere voorzitter waarnemer voorzitter daar te gaan zetten. Het United Nations Country Team in Suriname heeft zijn jaarverslag van 2025 overhandigd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een samenwerking op het aanwezige Amerika vorig jaar 12 miljoen hebben geïnvesteerd in meer dan 60 ontwikkelingsprojecten in Suriname. 12 miljoen Oebarisiamis hebben geïnvesteerd in 2025 mee. 60 ontwikkelingsprojecten Suriname. Or bataye gaye hai voor de uitvoering van het programma was er budget van 17,4 miljoen begroot waarvan 14,2 miljoen werd gemobiliseerd dus to ye baat hai bolega uitvoering prestatie van 85%. Amerika investeerde die zich aan. VN werden de middels ingezet voor projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale inclusieve klimaatbestendigheid, institutionele versterking. 18 VR-organisaties werken daarop in samen met de Surinaamse overheid en andere partners aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Afgelopen partij die Amerika Suriname ke projecten meer. 12 miljoen investeer krise hamare janta to yahan par bataye gaye hai uitslagstemmen van een WIPA overmening van de rechtsstaat zegt Fernandes Mensen John Otra Admi toch stem krise deyana me bole hega uitslagstemming hega nationale assemblee me obole hega nationale assemblee me met de vordering van de PG om drie voormalige politieke ambtsdragers in staat van borstverkulling stellen. Bolle, daarmee is voldaan aan de wettelijke vereisten de grond van artikel 140 euro staatsrechtsgeleerde. Bolle, hega, Hugo Mendes ziet in het parlement debat twee duidelijke stromingen. De eerste stroming leest de wet strikt en stelt dat de PG slecht een gemotiveerde verzoek hoeft van de overleggen van vervolging. De Fernandes mensen, ik erbaar mee. Boli zega, hamari janta. To hum aur aage ko apna program lekar chalte hai.
यहाँ पर बातचीत हो रहा है, यहाँ बातचीत हो रहा है दोस्तों। बीबी मुत 118 मिलियन बतालन अन फोनसन, स्लेक 32 मिलियन स्टार्ट अप एट बोखरोटिंग। भैया खेबीबी जाने के है जोन खेतवन एट वन बाटे मिनिस्ट्री फन खेबीबी इन स्टार्ट सेल ऑइट फूरिंग तक ही फन आ रेखलक फोनस मेट फिनाशियल कंसीक्वेंसी फिनाशियल फोनसन खस्किदन है ट्रैकिंग। तो भैया जो साको लड़े हैं एकर बारे में Minister van Grondbeleid en Bosbeheer heeft voor 2026 schatting 128 miljoen nodig om uitvoering te geven aan de rechtelijke vonnissen met financiële consequenties. Door beperkte begrotingsruimte is echter 32 miljoen opgenomen in de begroting. Je maakt een begroting 128 kali 32 miljoen. Bolega voor de rechterzaak ook John Jai Okerbare mee. Volgens de minister zijn er ongeveer 25 fondsen die financieel verplicht zijn voor de staat zich meebrengen. Obolega, een bedrag van ongeveer 55 miljoen. Centraal en de GBB stelt dat het ernstig ernaar streef uitvoering te geven. Obolega, ipaiswaka hamiliga, bolusup ke staatstekort hega, fondsen ke bereke, toen jane admilo ke keet peet ke kuch ke kagaj bhagat, sakwa voor de rechter jai, isup ke bhi chahi okar bare me, aur pap dekho bhaiya, 200 hajar American dollar rovail hai, Suriname me bhaiya, chinoa ke na na ha, 200 hajar Americans dollar bhaiya, टोपास्ट्रात के बातचीत रूफ ऊपर पाल भैल है और चिनुआ के भैल है भैया 3:30 बजे दिन दुबरे भैया ना निया बतावे हैं। हाँ क्रेकर पॉलिसी ब्यूरो 3:30 बजे मेलिंग पाई से कि रो वैले भाई रो वैले कस के रो वैले 200 हजार भैया। हाँ अब बोले हैगा फॉरलोपक इंफॉर्मेशन बोस्टन द ग्रुप फरदाक्तन ए 2 ब्राजीलियंस मानन ए 3 मानन फन क्रियोल्स द अफकोम 3 गो कपड़ी और भैया 2 गो ब्राजीलियन रहा और इस अब गेल है भैया पिस्तौल लेकर रूफ करी से हु द फरदाक्तन प्रसिस द वर्क सेन गगान इन अंडर वेलकम ओमस्टैंडिगेडन हर गेल wegbuit gemaakt wordt momenteel door de politie onderzocht. Bij de overval raakte niemand gewond. Na de daad sloegen de verdachten op de vlucht met de buit. De politie heeft de zaak in onderzoek. Mensen, abhi uske bare mein aur kuch hoga to aap log ko hum jarur batayenge. Want jaise humne padha tha ki pakdaye gaye hain log bhaiya, तो अभी कहीं हम पढ़े थे उसके बारे में जैसे होगा तो हम बताए। तो त्रेम भैया आज खुशूल टेनिस फॉलोसल्टी लीड फॉर अफगान आन एनबीआई फिनाले। अरे भैया स्पोर्ट के बाद मैं त्रेम गई है वहाँ पे और इस आज खुशूल एन आज खुफलोटन इन द मांडीजोन गार्डन waar maandag de derde wedstrijd in de finale van de NBA plaatsvindt tijdens het volkslied, saluleerde de Amerikaanse president toen dat een grote scherm in het stadion getoond werd, klonk gedurende enkele seconden een fluitconcert buiten het stadion New York waar de basketballers van New York werd Trump bij aankomst ook al uitgefloten. Ik zou willen dat hij hier niet was. Hij is geen echte fan. We hebben hier ons hele leven opgewacht en hij laat alles weer om het draaien zoals altijd. तो ओके सब नामांगे भैया इससे बात है। तो हमारे जनता आप लोग को एक गीत को हम सुनाएंगे, अभी हम वापस आ जाएंगे।

और दोस्तों एक गीत आपकी हमने सुना दिया है। तो दोस्तों हम अपना समाचार को आगे को बढ़ाते हैं। अभी आप लोग को हमने बताए थे जो 200,000 200,000 अमेरिकन डॉलर रो फैला चिनुआ के भैया सूरीनाम देश में, आपको हम बताए थे। तो बातचीत और आगे यहां पता चला है कि जो रूफ करके भगल रहा एगो टैक्सी शोफेर वास ओ बत्रो के मेन से एगो टैक्सी शोफेर भी ओम रहा और ओ तो लेके इसे भगल है त्योता आलियोन इसे चलावत रहा और सिपाही जाए इसे के क्लेमर है करी से भैया uit het lukte de West-Dinaren om betrokken taxichauffeur klem te rijden en aan te houden mensen. Op het eigen gegaan, je traat je sipaai is een beslag kreeg ze 200,000 Amerikaan dollar is op leraar wat die politieactie werd 165,000 Amerikaan dollar is op terugpijgen he. School toe pijgen he. Na de uitgewerkte informatie van de diverse gespecialiseerde intel unit zouden in totaal 7 mannen en 1 vrouw zijn aangehouden. Saat Mardana en oma ego hamara nari bi रहा भैया औरत रहा जो उमा रूफों में शामिल रहा लेकिन सब पकड़ाइए दोस्तों एंड दैट इज अ गुड जॉब खुए वर्क फॉर द पुलिसी द मग एक ओक एन केयर चे जख में से मार द इज इट वेरे गो कामबियो के भैया एकदम लीक कर ली गए है कोलाइस वे उठा ले के से को कामबियो से जहां हम लोग जाएला पैसा लेवे सिरी फेस्ट मोनी और एक्सचेंज बोरेस्ट्रात में जोन बा बोरेस्ट्रात में भैया वहां पे को कामबियो है मोनी एक्सचेंज एंड बोरेस्ट्रात फॉर नोमन वर द सेशन 5 तक यार को कामबियो होदर एर आ सोमवार के रात के जो आइल है ते देखे ओकर साक पन जो रहा सब टूर टूडाड़ी से इन खबरों कर भैया भीतर घुसल है और जो अंदर सुख करी से ब्लेक दादस फिया अख्तर सईद फन वोन खबाओ तू खान हाद फरसखाफ और ओमा कोई न रहा तो से फ्रय हंद जात रहा इन ड्रिंगर्स फोर्सियर द इज एन डिफन एसर एंड फॉर फोकस ट्वी दुरन वरना से द रेट फन अ कम यू बिनन ड्रोंगन एनमाल जो भीतर गेल है बोले अन क्लोज मी वन इन फलिता एंड सुरनाम से डॉलर्स वारन बवाड De politie van Münder heeft de aangifte. Er werd gewerkt aan de opsporing. De otra paisa. Sab chalge patana hai kitra rahau ma bhai. Lekin an cambio hui best heel veel geld natuurlijk in zijn kluis. To abe 200,000 chinoa ke mare ra. Cha gelukkig pakdai ge he. Lekin hiya pe. Pin kluis chori bhele cambio ke. To beste luisteraars. Hamare dosto. Suriname is... onveilig mensen wat betreft over die roof assen के बारे में अभी बताए थे कि अधीन के वो क्या क्या बोला था जो छोड़ के और अपन कुर्सी चला गया था जो समय पे जहां तरह बस लेस करे के यानी कि जो हम लोग के स्टार बस्कुल लिखने के बारे में वारों में अधीन ook niet meegestemd, omdat we bolen dat dossier moeie na hebben. En bolen hij gaat toekebaten volledige beoordeling krijgen. Dat doet de rechter en de OM gaat dat doen. De rechter bepaalt het. Zo is het, mensen. Ik admi soetella bed legerige man, slachtoffer geworden van een bhaiya. Oedem ja, 61 jaar ik admi bedi meer haan. Is in de vroege ochtend het waarke. Als ze geile bhaiya ook een gewapen woning roof karise. En leiding kandaan me bhaiya. Leiding me bhaiya. Hier hebben we 3 gewapende mannen drongen de woning van de slachtoffer binnen. En ghoes ke jai ke ook er ghar me se falita chorai se bhaiya. Volgens voorlopige informatie is ze forceer karise. De daders woning en verschaften ze zelf vervolgens toegang.
घुसल है और बोले है जे घुसल है क्रिमिनल तो 10,000 एसआरडी 100 गो यूरो और 100 अमेरिकन डॉलर इस अपने के भाग्य है। द पुलिस वेर ना ने इंसिडेंट इन खिसकाकल और बतावे हैगा कहां पकड़ाई भैया तो लेके चल गए और काबले हैगा 61 यार का बेट लीखरिख मान। हाँ भैया तो ये आदमी के इतरा सभन चोरी करके भग गए एक दरी तो भैया या खबेरुए बंदूक किए चोरी करके ले चल गए कतवेक वेख में कतवेक वेख के बाद सोना के गहना पैसा कौड़ी बंदूक सब ले के भग गए भैया कतवेक वेख के बातचीत है। तो हमारी जनता हम चलते हैं और शुक्री की गार खवन में स्टेक इसी दिन जाने वक्तर लोन मतलब सिक्योरिटी जोन है सामुएल कुलदीप सिंह स्ट्रांड कुल ना कफलुद्दीन स्ट्रांड के बात है और फन रूख है स्ट्रांड हूक तो फन मनीला ईएनएन बताई गए हुआ छोड़ी भोकी से भैया एगो सिक्योरिटी गार्ड के बफेल के आदमी के और यहाँ बताए इंसिडेंट वाद फरदख्त खक्लीत इन क्राइम क्लियर खतरा तो यहाँ बताएंगे और भोग के सिक्योरिटी गार्ड के और पेल भागल भाई तो ये बातचीत हो रहा है। हमारी जनता कहीं के और नहीं हमारा श्री नाम देश के। तो दोस्तों आप लोग जाने हैं बखरोतिंग भैल है और यहाँ पे फेस के लोग जो है द फ्रीनिंग फन इकोनॉमी से सुरिनाम से फेस प्लाट्स फ्राक्टेकंस बाय द वे से वार ऑफ द रेगिंग है बखरोतिंगस्टोकोर्ट फन 2026 ही वरीकन और एक बारे में स्वामी गिरधारी जो नहीं कैसे करतारे से फेस के बद्राख है तकोर्ट फन 8.1% फन ब्रिटो बिनेलांस प्रोडक्ट फन बीबीबी सो आज रखेरिंग स्टेल मार 7.7% है गिरधारी जोरी से ना 5.8% मा 7.7% है द राज फा मिनिस्टर 21 मई के एगो नोटा पठाई से और पठाई से onderwerp staat begroting 2026 goedkeur gekregen op de uitgaven 77,4 miljard tegenover totale ontvangkosten van 64 bolle deske bitter 64,6 miljard en ook uitgaven 77,4 miljard volgens de regering resulteerde dit een begrotingstekort van 12,8 miljard onwel 5,1% van de BBP dat voor 2026 vaststelde op 252,2 miljard tekort dus toe en ja betaalde gehe गिरधारी बोले हैं बोले सितंबर 2025 में नोग राम अप ऑनगेफेर 180 मिलियार्ड रहा द नीवर राम फान 255,2 मिलियार्ड बकेंद भाईल है। तो दोस्तों और लंबा चौड़ा पैसा के बारे में लिखा गया है लेकिन हम आप लोग के छोटे रूप में बता दिया है कि ये कैसे है और कैसे नहीं है। सुरिनाम में बहुत पानी बरसता दोस्तों चारों बगल डबा डब पानी अबे भरा हुआ है और वहाँ के मित्र लोग इस दिन से बोले हैं बोले हुआ पानी अबे ना रुकेगा दिन के रात के दोनों पानी बरसे हैं और फिर देर तक खराद है लेकिन बारिश का वहाँ थम नहीं रहा है दोस्तों। और ये बातचीत है जो रखीरिंग वहाँ के फन रोक है इस तरह थे एकदम खराब हो गया भैया भारी भारी गढ़ा है फन रोक है इस तरह स्लंगन हो उस तरह के बारे में अब बोले एर इज नॉक निच कॉन्क्रीट अब ताफल खले ओग नी दैट ऑन से रेख साथ तेगन द स्टार्ट वर्ड इन खतरोकन हुएल दैट अन मोगलकेट इस एक बैताली डायरेक्टिक फर्सी खुदा पक्ष के बारे में है हमारे यारो हमारे प्यारे प्यारे जंदा। अब हम जाएला सोमो हार्जो ई पौल सोमो हार्जो के बाद भैया पौल सोमो हार्जो कितना दिन से सुरिनाम के प्रेसिडेंट के भैया आज भी शेर है पैसा पावे है तो परचा लुहूर के टॉप माने पौल सोमो हार्जो
ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਾਵੇਗਾ 7% ਕੇ 60% ਫਨ ਦ ਸਲਾਰਿਸ ਫਨ ਦ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਫਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸੁਰੀਨਾਮ ਅਸ ਅਮਤਨਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਲੀਫਟੇ 83 ਯਾਰ ਕੇ ਹੋਈਗੇ ਹੈ ਹੂ ਫੇਲ ਸੋ ਇੱਕ ਆਨ ਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਰਦੀਨਨ Hoogstens 20.000, maar ik krijg nu 60% van de presidentsalaris met alle emolumenten. Wat ga ik ermee doen? Ik geef terug wat ik over heb, geef ik terug. Ik heb niets nodig. Ik heb auto's, huizen. Ik heb alles, zei ze op een harde vrijdag tijdens een persmoment. Volgens de politicus kent Suriname op dit moment twee staatsadviseurs, namelijk Somohardo en Ramon Abrahams. Van wat zijn werkzaamheden betreft stelt hij dat zijn adviezen als adviseur goed door de regering wordt gevolgd. De Rood-Witte Partij gaat zich in de komende periode sterker inzetten en op sociale तो भैया बोले पौर समो हार्जो बोले मोई आजफीस देवे है बाकी हम लोग के देशवे ना मोई चले भैया तो कैसन आजफीस तू देवे है भैया समो हार्जो एंड अब्राहम्स हम लोग के देश के फौरज खांग ना दिखा है समो हार्जो भैया द मख्तु सेल्फ कान से खदा ची हिल खुद आजफीस के अब देखो भैया एसएलएम टू स्टेल ब्रेक लैंडिंग अफ ना टचडाउन नीचे छुई के और फिर चढ़ गए भैया पचासी डराई गए है डराई गए प्लेन उतरत रहा एसएलएन जमीन पे गोड़ धड़े से पहले फिर चढ़ गए है पचासी गुस्साई गए है डराई गए है पचासी इन द Gecharters toestel van SLM raakten atwaar ke 7 juni ke lichtelijk in paniek nadat de landing op de Sandrei een laatste moment werd afgebroken en een vliegtuig opnieuw opsteeg. Toen je baat het uiteraard op een chaar gegeven. PY993 Amsterdamse Suriname Geila. Op sociale media staan beelden waarop te zien is hoe de toestel de landingsbaan raakte. En vervolgens kort deze touchdown weer vermogen maken opnieuw de lucht in te gaan. Na Utterpijs via Gordharadharad of luchtvaartscanner gaat het om de zogenoemde bullen of doorstaat een reguliere veiligheidsprocedure waarbij landing wordt afgebroken en later opnieuw wordt uitgevoerd. Hoewel dit in de luchtvaart niet ongebruikelijk is, zorgt het gebeuren van lichte spanning onder sommige passagiersomstanders op het AWH. Dat had mede te maken met het feit dat zondag ook de herdenking plaatsvond van de vliegraam van SLM. 7 juni 89 keer Oregoplein Giralla op het toestel van SLM neer tijdens de nadering van de rij. Nabij kwamen 178 mensen dood. Juist door die beladen datum leidde de onverwachte manoeuvre zondagavond tot ongerust reactie op de sociale media. Verschillende personen gaven aan dat het afbreken van de landing het extra nerveus maakte mensen. Oei rood giral ha hem lukke SLM 19 en 89 keer. Oei plenua op SLM pin goor dharke. Aur apen banti nietje dharke. Pin chaharge upper. Janta dalaige ki yois oei rood. ई चीज भाईल है हमारे यारो हमारे प्यारे प्यारे जनता सांग भैया चिनुआ भैया देश में चमके है पानी चारों बगल बुड़ल है और बोले बेशक मैं आज का एकन मोबाइल वाटर पंप तो सोहन द सस्तक तो थोंद तुई होंद दैसन अमेरिकांस डॉलर बोले एक पंपू भले बिकने उकीने मांगे है और बोले मोबाइल वाटर पंप जो हिया से हुआ हटाई सके है और गयाना से दुई को लेनी करी से भैया अब सांग मांगे अपरे की ने और बोले एक हैव द अनबस्टेडिंग होल्डन फॉर 3 मोबाइल पंपन एंड इट इज न्यू वाटर ऑफ द ik weet niet wat de prijs precies is maar ik heb begrepen kegelmobiele pomp 160 tot 2 ton dollar mee mile hai bhaiya to yahan pe janta bahut यानी कि बोली से कि जो नौ को मिलला उपम फोन कहाँ है भैया सांग जो तू फिर से पैसा मांगे ले के किने बोले उपम फोन मिलेगा कि कोई के घरे धरल नहीं द बवेज वन फॉर द आन दैट है फाकर कॉन्फ्रंटेड वर्ड मेटर आर्गुमेंट वारम खीन ब्रेक बार
gebruik maakt van een soortgelijke waterpompen die rijstboeren gebruiken. Die pompen beschikken echter niet over nodige capaciteit om hevige wateroverlast te lossen, aangezien de capaciteit van de pompen van Guyana 10 maal hoger is. Om aan de behoeften van Suriname voldoen, zijn pompen nodig met een capaciteit die 2 maal groter is dan de Guyana. De bewindsman is blij met de steun van de buurland, aangezien mede hiermee het Rijmawal project. To pani ke bane mein hum log ke Suriname des to bud gaya hai hamari janta. Aur ye chinwa bichara bhi na jane wo ka kare aur ka na kare hamare dosto. To aapko hum aur aage ko apna program ko sunayega kya hua aur kya nahi hai. वही का फुटबॉल तो आने वाला भैया तुलों जानो है एकदम आएंगे मुड़ी पे आएंगे फुटबॉल तो एसवीबी जो है सुरनाम से फुटबॉल बोंद जो है बोले हैगा बफेस्ट तक फरकूप वही का कार्टन ऑब्रेंस मुसीरनाम से फुटबॉल फर्स्टर्कन कार्टा बेचे भैया प्रोतिक डिस्कशी die ontstaan over de beschikbaarheid van de WK-karten of de Surinaamse voetbalgemeenschap. Op Bollehega, Surinaamse voetbalbond, Bolle kreeg de organisatie van de FIFA de mogelijkheid om een beperkt aantal karten voor een wereldkampioenschap af te nemen. Op het moment dat hiervoor een beslissing moest worden genomen, beschikte de bond echter niet over voldoende financiële middelen om de karten zelfstandig te financieren. Bye! Tussen naam te bij jou, abitus heb kali rechtig hoe je televisie धरेके और एक बारे में यानी कि एनपीएस के फोर्सिटर हैं और हमारा फीसर प्रेसिडेंट है एक बारे में 500,000 डाला अनका बोले हैगा भरी एसवीसीएस के मिलाए के जो ने उसे के कई खेगा अन टेलीविजन के रखते जो है ओके देखे के हमारी जनता तो देखा जाए पाकितो भैया रखेरे के घुस गए हैं जब से गए लोकर कुछ सुनाना है उधर चिनुआ यानी कि अंदर वेस मांग स्टाक कर इस रहा डेमोस्ट्रेट कर इस कोतु मांगे करे के मांगे करे तो यहां पे बता एनडीपीआर स्टीफानो पाकितुई पाकी पाकितो Bierveld ziet in tegenstelling tot Jean Shire Mixon en Reynold Peppy van Els niets mis met het besluit van de regering om recent 2 waterpompen Guyana te lenen. Volgens de politicus is helemaal geen sprake van schande en zou de Surinaamse justitie apakitoke mukule bijaap to NDP hier hoe je opeile NDP ke u bout bout bad bolatra. और आज एनडीपीओ के काम दे दीजिएगा तो चिरैया दूसर गाना गावे भैया चिरैया पहले भजन गावत रहा अब हे भी पोकू गावे है तुलुन समझ गए ले हमार बांध कहां लेकर जा है तुलुन समझ गए लो तो हम कहां बोले मांगिला हमारे जनता Bloedsporen in de MC Polykliniek Apura in Braak, bhaiya. In Braak, bhaiya, hai. Polykliniek Apura, mein jahan pe bhaiya, poli, oke, bhi sab namne nispoiti gaila. Chori kare ki paracetamol, bhaiya. Aur shukravar aur sanichravar ke raat ke 6 tarikh ke wego meji se sending hai ga. Ane Suriname Apura mein aur yahan batave bhaiya hua aina phodi se Net voor mij dat onbekende daders een glazen raam hebben ingeslagen om het band binnen te gaan. Op een leidje geilet een baan maaloom per uus heb gehaald goor kuch kat gehe van bloedsporen raam. Voor zover bekend is het niet noemenswaardig buitgenomen. Koontje toe paie bhaiya. Ego dat raakje ghar me kali dawa ijs poiti chungi paio. Na de ontdekking van een inbraak schootu geil he. Oma bloedsporen paie se apere se churwa jai ke haand goor katwaai ke चल गए हैं बयान बट भीन जाएगा वही हतवा हो ही तोर खार फरबान करी फरमुडलक अफकोमस्तक फाने दाद जिसे मोकलक है बर फरवान बैदे फरसेरे फन तुकांग फनवीक न अफवीक खाई फन जिसे परस्पोरन एन नो साकलक स्पून मक वरक्षम हीदन ब्लेव द पॉलीक्लिनिक साथ दा एव बंदरा वन सब चाहिए साफ सुथरा करे के तो हमारे जनता
ऐसे बात है तो लोग जानो तेलवा हम लोग के बन है ओली टैंकर इंस्ट्रार फन हर मुस ऐज का स्काकल वहां धुआं पे अबे बोट ल हबड़ा ना होवे भैया का बोले हेगा ईरान के जगह हुआ हॉर्मुस में तो अमेरिका बोले है चेतन अख्तर अनफाल एगो एगो ओली टैंकर रहा जो पालौ के फ्रांगली के जात रहा और एक स्क्रैप थे तरीकी नाल कमांडो अमेरिका के एगो F-18 जो रहा बोले ओके इस काकल के रिपोर्टिया दोन में प्रसिस मनुष्य मशीन कामर तराकन het is a safer escape dat US ken Tom uitschakel vroeg ter commando eraan toe. Ook meldde commando dat de 134 vaartuigen zijn omgeleid nadat ze wel Amerikaanse bevel hebben opgevallen. De VS hebben als reactie op de Iraanse blokkade van straat Hormuz een eigen blokkade opgeworpen bij de Iraanse havens aan de voor de wereldhandel belangrijkste straat. Aurus Heptologiane Pahele Iran Bankelera op Amerika op een bunker deze hoeven pe. Iran is voor zijn olie export voor grofweg 80% afhankelijk van die route. Vooralsnog is Iran daarom gedwongen olie die hij produceert op te slaan in plaats van het uitvoeren. Dat kan consequenties hebben als Iraanse olie opslaat. Op kontje heeft pahele Iran op een bunker de raha. Sabke khatir ab Amerika okar bunker de iski tor joon tel nikre hai. Ap rahi des mein tu dhalle rahiye. Wan ab okay tu bech na paiyo. Aise banchit hai. Hamare zunne walo. Hamara samachar mein. तो हम चलते हैं एक बॉलीवुड सॉन्ग आपको हम सुची तरी सुनाई दे कि ना सुनाई वांट हमारा समय भी धीरे धीरे तो आ रहा है।

तो दोस्तों और आगे को अपना समाचार को हम सुनाते हैं भैया। यहाँ पे बताए गए हैं पॉलिसी वार स्क्रीड फॉर टू नहीं मतलब ऑनलाइन अपलिफ्टिंग फिया फेसबुक, तो जाने फेसबुक पे भी लोग आजकल बहुत अपलिफ्ट करते हैं, इसके बारे में आप चौकस रहना चौकस रहना। पॉलिसी बोले है फेसबुक पे आदमी ऑनलाइन चीज चूज बेचे एक बारे में खूब मोई से तुलन छानबीन करके जाइए कि ने बहुत जबर अपलिखते रही हुए है। वेस अलर्ट पे ऑनलाइन आन कूपन में से द पॉलिसी ऑफिसर्स बेरकस ऑन फॉर सिक्स तक से सेन बेर ऑनलाइन आन कूपन एंड एक्स्ट्रा वाक साम तो ब्लाइफन वन एयर फॉर कूपन फॉर आ om betalingen vragen, controleer indien mogelijk de betrouwbaarheid van de verkoper en wees terughouden met het overmaken van geld aan onbekenden. Bhaiya somar paisa na overmaken kariye oplicht bahut jada hue hai to sipahi yahan pe aap log ko alert kiya hai iske bare mein aap log ko zarur zarur zarur zarur yani ki apne aap ko chaukas rehna padega। तो दोस्तों यहाँ पे और बताए गए हैं और आगे प्रेसिडेंट सिमोन ऑनदरवाइज स्लेटल तो ग्रुई इन आनमूदर बस्ट्रेडिंग। हाँ रे बाप ये भी हो रहा है स्कूल के लड़कन के बारे में। सिमोन्स बोले हैं ओपनिंग फॉर नेशनल ऑनदरवाइज कॉन्क्रेस इन द रॉयल बेडरूम फॉर होटल तोरारी का है बलंग फॉर इन्वेस्टियर इन ऑनदरवाइज ऑन द स्ट्रीट फॉर द होस्ट स्टार्स फॉरम ऑनदरवाइज बासिस फॉर ड्यूसाम ऑनटूविकलिंग के बारे में है हमारे प्यारे प्यारे जनता। हाँ तो यहां बतावे क्यूरी और खुद अपगलेडे बेफोल्किंग फॉर्म द बेसिस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जब बेफोल्किंग अपग्रोई ना है भैया चलाक ना रहेगा को देश के ग्रोई ना होई तो नेशनल ऑनदरवाइज कांग्रेस भाई लेगा ऑफिशियल ओपन भाई 8 तारीख और 10 तारीख के और वहां पे बताई गई है क्या को टीमक नाम है एजुकेशन द वे आउट आर्मूदे ना द ग्रोई फॉर फॉर आउटगंग। तो हां एकर बारे मिनिस्टर डायरेक्ट क्यूरी बोले हैगा ऑनदरवाइज के की बोले हैगा दुई गो फंडामेंटले उत्गांगस्पंतन हैगा और बोले द बविस्मान बनाने के को खुद अपलाइडिंग जो लड़कन पावे आदमी पावे है बोले तब तो देश के इकोनॉमी ग्रोई हुई। और बोले जो अपलाइडिंग तो के ना हैगा तो बोले कि कैसे तू देश के अपलाइडिंग ग्रोई कर पाइए। सुरीनाम में तो एक रवाज है भैया जो तो के को पॉलिटिकल पार्टी है जेकर पीछे पीछे तू दौरे है तो के चाहे कोई अपलाइडिंग है ठीक से नहीं ना मैं पा जाइयो भैया काम करे करे बोले एर माल मिस दोना लांती और रुकत जिंदगी भर सहस्तक यारी तक वहां बैठी भैया और चाहे वो काम कुछ कर पाई या ना कर पाई भैया। आप देखो यहां भैया क्यूबा के छौड़ी लोग के मेंशन हंडल भइल है बुलाई से कुछ और छौड़ियन के बोले चल तो लोग के मोई मोई काम देबे और जाई के वहां पे हो प्रोटेस्ट हुई में सबन धर देवे भैया। एकर बारे में ऑफ देल ट्रैक फिकिंग फॉर पर्सनल टी पी स्कोरस पॉलिसी बोले है को सेशन 20 तक 11 के क्यूबान है और एको 55 तक 11 के सुरीनामर है। इस सब छौनी लाई से गया ना वहां से क्यूबा से और लाई के नख क्लिप्स में इस सब के धरी से बॉर्डील करवावे हॉसल करवावे फॉर द प्रोसेस टू ई और बेन लंत में इस सब के भी धरे रहा भैया वन आई द फॉर लूप के ऑन द सुक इस कब्लीकन दैट अ फ्रॉ ऑन द फॉल्स फॉर वेंसलन सुरीनाम सो सेन खबरा helemaal in het land zou zij gedwongen zijn geweest om als posters 2 werkzaam te zijn in nachtclub en een bordeel in binnenland. Binnenland, maar ja, volgens de politie was daarnaast sprake van vrijheidsbeperking, intimidatie en bedreiging. Ook zou het geld dat de slachtoffer verdiende stelselmatig door anderen zijn afgenomen. Hoe ze op een ding beetje hun pijs hebben, hoe pijs was op een lille wat raar. सिपाही एकर बारे में पकड़ी से भैया बोले सेड ऑन द सुक फॉर द एक्जैक्ट ओमस्टंडगीदन वन एगो औरतिया ओमा से निकल के भाग गया रहा और जाई के अनमेल कर रहा सिपाही में तब चीज ऑन द सुक भइल है। क्रॉस पुलिस से नाम बना दिर द मेंशन हंडन अरेस्ट का मिस ड्राइव इज ए रूप द सामने को अप अलर्ट ब्लेफन द सामने फन कौन जी भैया जाई अलर्ट करे जनता का जाने उस सब चीज के बारे में और सिपाही के चाहिए कर बारे में काम करे अलर्ट के मतलब है तो लोग जाने रहिए कि ये सब चीज हुए है

हाँ बताई गई है। श्री राम के बातचीत हो रहा है हमारी जनता। तो यहां से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करते हैं। घड़ी की ओर देखा जाए भैया तो पूरा एक घंटा हो चुका है। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तुम्हारा मुलाकात फिर रेडियो के माध्यम से होगा। जोड़ी नंबर 1 है हमारा नाम।

और अनोखों अन अखियों की झरोखी के बाद हम चलते हैं। आप जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, हमारा प्यार आप तक पहुंचे। और चाहे ठंडा लगते हो और चाहे गर्मी का मौसम है, रेडियो फाहुन आपके साथ है। और धरती पे जहां भी रहेंगे, हमारा तुम्हारा प्यार अमर रहेगा।

और तुमसे प्यार इतना हुआ है कि साथ में राज बब्बर क्या कहते हैं वो भी सुना जाए।

भी इस तरह से हमारे जिंदगी में शामिल जो होगा तो और क्या क्या नहीं होगा आपको हम जरूर बताएं। उसके बाद हम चलते हैं वो मेरी नींद मेरा चैन की ओर है।

और ये प्यार करते हैं तो दर्द भी सहना सीख लीजिए, कारण प्यार में दर्द तो जरूर होता है, नींद भी उड़ जाते हैं। और साथी साथी 1982 का एक स्पेशल गजल सॉन्ग फ्रॉम चकदी।

आया जगदीप सिंह एक हिट गजल सॉन्ग थे हमारी आ रही साथ ही साथ हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया मिस्टर कुमार यानू अलका याग्निक क्या सुनाते हैं यार नहीं कल तक हिट सॉन्ग फॉर जॉनी नंबर वन।

हमारे चार के नंबर कोई भी कार्य के लिए 0 70 362 20 77 0 70 362 20 77 Radio के माध्यम से कुछ काम करवाना है

सुधा में दौली मोहन प्रोग्राम भी सुधा है उनके तरफ से। बधाइयां और शुभकामनाएं।

और आप एक हिट स्टेशन पाहुन हिंदुस्तान रेडियो के माध्यम से जबकि हमारे तारकुलम 07 362 67 20 77 20 77

0: गाओ नाचो झूमो खुशियां मनाओ आपस में प्यार में मिलकर, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता भाषा धर्म मत भूलो, प्रचार करते चलो, समझा रहे बतला रहे आपको कौन इस देश में।
1: आमी है हमारा शान, बोलो सरनामी है बड़ा महान।
0: और कौन ये कह रहा है? दबीन बलदेव सिंह।

हॉलैंड में रहते हो ना, मत भूलिए अपना संस्कृति, अपना भाषा, अपनी सभ्यता, यही आपकी डेटी तय थे। कौन हो आप?

भैया रवीन बलदेव सिंह जो आपको ये संदेश दे रहे हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता मत भूलो। और क्या कहते ये भाई, नाम है सूरदेन भगवान।

शेर शायरी सीखा हूँ इसे कभी कभी कहता हूँ कि शायर की मोहब्बत होना खराब नहीं होता दोस्तों, शायर की मोहब्बत होना खराब नहीं होता, तुम्हारे सिवा पूरा एक ख्वाब नहीं होता। इराने जी कभी आंखें भी देख लिया करो, नबी कभी आंखें भी देख लिया करो, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हर वक्त बातों में सही जवाब नहीं होता। हमारी बेस्ट और लविस्तरा से प्रोग्राम पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो कहना है।

और यूं ही आपसे ये कहता हूँ कि दो चीज़ें जो है, दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ करना। क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। हमारी और बेस्ट पाहुन की सुनने वालों,

वाह रे वाह कलाकार, उनकी जो है कैसे तारीफ करें। यूं ही हमेशा मैं कहता है कलाकार की तारीफ तो चाहिए करने के लिए, तालियां वही चाहता है कलाकार, उसी से खुश रहता है। और जो है संगीत हम तो सब पसंद करते हैं, महफिल ना सही तन्हाई तो मिलती है ना, महफिल ना सही तन्हाई तो मिलती है, मिलन ना सही जुदाई तो मिलती है। कौन कहता है कि प्यार में कुछ नहीं मिलता, वफा नहीं या वफा ना सही बेवफाई तो मिलती है हमारी। और बेस्ट मेंशन पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन, हिट स्टेशन द म्यूजिक म्यूजिक स्टेशन, और यहाँ पर बयान करते हैं।

0: और ये खास खास नंबर आपके लिए और बहुत प्यार के साथ हमारी बेस्ट सुनने वालों पावन के जो ट्यून है इस वक्त जो है आपको और पल घड़ी जो है जिंदगी के अच्छे से बीते, जबकि संगीत हम आपके लिए कुछ प्रस्तुत करें खास कार्यक्रम यहाँ से सुनाम तक लोग जो प्रोग्राम सुनते हैं तारीफ करते हैं उन लोगों को मैं हृदय से फिर धन्यवाद दे रहा हूँ। हमारे भाई छोटा भैया जो है खास करके देव प्रकाश पूरन कार्यक्रम भी सुना है, सुना में माता श्री श्रीमती भी सुन दी और बलदेव खास करके जो है अपनी माँ के पास उपस्थित होकर और जो है साथ उनकी सेवा सत्कार जो करता है सुपुत्र होने के कारण ऐसा ही चाहिए ना अपनी जिंदगी में जो है और अपना जहाँ तक अवसर मिले ये कार्य कर सकते हैं अपने माता पिता के किसी काम आने के लिए, इसीलिए माँ बाप पिता जो है अपने सुपुत्र सुपुत्री को और ख़ास करके जन्म देती है जाकर जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो वही काम आते हैं बेटा बेटी जितने परिवार होता है। मैं इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी है माता श्री सुनाम है और वहाँ पर उपस्थित है हमारे भैया देव प्रकाश पूरन जी, आज उनकी बारी है माँ की सेवा करने के लिए। तो उन्हीं के नाम हमारी भैया देव के नाम आज के कार्यक्रम में जो है एक और जो यहाँ से मैं खास करके प्रस्तुत जो करने जा वाला हूँ एक संगीत यानी कि ढूंढ रहा हूँ और उनकी पसंद होता है जो दोस्तों अपने अपनी अपनी पसंद तो हर एक कोई को होता है ना और देव के अलहदा पसंद है उनकी हमेशा जो रहते होता है और पसंद है। कभी कभी किसी के अल्फाज इतने चुपते हैं ना कि फिर हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं क्या वाकई हम इतने ही बुरे हैं, नहीं तो देव याद नहीं तो। और आप ही के नाम से ये खास नंबर जो है माता श्री के मेरे तरफ से और अपना शीश नवाए के दोनों हाथ जोड़ के पालगी करते हैं न देव प्रकाश पूरन राजा।
1: ओ हो हो
0: दे हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश जी।

और मुकेश जी की आवाज़ में ये नंबर को सुनिए, और हमारे भैया नाम जो है राजा देव देव प्रकाश पूरन उन्हीं के नाम से आज के कार्यक्रम में बहुत ही प्यार के साथ वो कहते हैं अपनी माँ की सेवा सत्कार करते हैं सब कोई बारी बारी जाकर, भाई बहन जितने हैं दोस्तों, माँ ये शब्द माता जो है माँ, कितना भी लिखूं उसके लिए कम है। जब लिखते हैं लिखो, कितना लिखो, लिखना चाहते हो, ये माँ की है उनकी प्यार जो होता है ना, माँ कितना भी लिखूं उसके लिए कम है। सच ये है कि माँ तो माँ है तो हम है दोस्तों, माँ तो माँ है और जगह माँ है तो हम है, माँ नहीं तो हम नहीं दोस्तों। यही है आज के कार्यक्रम में, और हमारे प्यारे भैया खास करके देव प्रकाश पूरन के नाम और ये नगमा ये गीत आप श्रवण किए। प्रोग्राम फाहुन की आप सुन रहे हो, और इस बार सुरनाम के लोग, ये लोग जो प्रोग्राम सुनते हैं साथ देते हैं दे रहे हैं भी, हृदय से धन्यवाद।

हाँ, तो हमारी प्रिय और बेस्ट इसराइल से प्रोग्राम में खास सिलेक्शन और आपके लिए प्रस्तुत करेगा। गाने वाले आवाज आपके जाने पहचाने आवाज है, दो है इसमें से, दो है खास करके बादशाहों के बादशाह सात सुरों के बादशाह पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहेब और सुरों की देवी यानी कि द मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर। इन दोनों की आवाजों में ये नंबर आप श्रवण किए। आगे के कार्यक्रम में इस बार नंबर जो हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे तो वही कहते हैं, मिकी माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में, माँ के गोर के नीचे, खास करके वहीं पे स्वर्ग है दोस्तों। अरे कोई जो है कहीं से, कहाँ से आए हो आप, कहीं से वही माँ से आए हो, और माँ के इज्जत हमेशा करते रहना जहाँ तक हो सके। और आज जैसे मैंने भी आपसे कहा कि मेरे भैया जो है छोटा भाई देव प्रकाश पूरन वहाँ माँ के पास उपस्थित है चुनाव में और उनकी सेवा भी कर रहे हैं, तो उनको बहुत से बधाइयाँ शुभकामनाएँ देते हैं। श्रीमती विसुंदेई बलदेव पूरन है ना दोस्तों, खास करके आज के कार्यक्रम में उनकी मैं अपनी याद कर रहा हूँ कि मेरी माता श्री है, सभी भाई बहन जो जाए, खास करके वती हिसला गीता शरीता गीता के जन्मदिन कल था, बधाइयाँ फिर से देते हैं। और देव रामोन देव शोभा संजय और एक भाई है, खास करके सब मिलकर बहुत से बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हैं। देवुआ भैया की देव कार्य करते रहना, अपना कार्य यही जिंदगी है, जिंदगी में जो आप करेंगे सु कार्य अच्छा कार्य करेंगे वही साथ आपके जाएगा, पैसा लत्ता और खास करके पैसा कपड़ा लत्ता ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा दोस्तों। घर द्वार जितने आप खास करके जिंदगी भर जोगा जोगा कर रखे हो, सोचते हो कि आपके नहीं कुछ नहीं, सुकार्य करते रहो, आपस में प्यार करते रहो और जहाँ तक आपके ज्ञान है बुद्धि है अच्छा ही करिए, कार्य करते रहो। माता पिता जो है वो आप के जन्म दिया है, उनकी सेवा सत्कार करते रहना जहाँ तक अवसर है, जहाँ तक अथाह शक्ति है हमारी। और बेस्ट लव स्वास्थ्य प्रोग्राम में श्रीमती जो है विसुंदेई बलदेव पूरन की तरफ से सभी बच्चों के लिए, सभी केंद्र क्लाइन केंद्र के लिए गीता खिसला की सरिता और उनकी क्लाइन केंद्र अख्तर क्लाइन केंद्र भी हो चुकी है ये माता श्री को, तो उनको भी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए आज के कार्यक्रम में श्रीमती विसुंदेई बलदेव पूरन की तरफ से अपने सभी बच्चों के लिए बहुत ही प्यार के साथ आशीर्वाद ये दे रही है। और क्या दे सकती है माता श्री इसे बढ़कर,

0: बलदेव पूरन की तरफ से अपने प्यारे बच्चों के लिए आशीर्वाद दे रही है।
1: अरे इस घर
0: ये माता श्री ये देवी
1: आन है, नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल।
0: माँ तो भी लक्ष्मी के रूप होते हैं ना,

0: जबकि इस नंबर पे फरमाइश आई सुनाम के रहने वाली है हमारी माता श्री श्रीमती बिसुनदेई बलदेव पूरन। दोस्तों आज के कार्यक्रम में उनकी सभी लड़के जो है जैसे कि शोभा रामोन देव और संजय भाई सभी बेटी खास करके युवती हिसला गीता शरीता और सभी केंद्र और क्लाइंट केंद्र को बहुत से बधाइयाँ शुभकामनाएं यूं ही देती है और आशीर्वाद दे रही हैं खुश है और साथ में हमारी खास करके उनकी सुपुत्र बेटा भैया देव पूरन जी उनके पास उपस्थित है और उनकी सेवा सत्कार जहाँ तक हो सके करता हूँ। उनकी फर्स्ट प्लेख्त जो है दूस्त प्लेख्त एक सुपुत्र के बेटा या बेटी को होता है बेटा के और जल्दी और जास्ती हमारी दोस्तों जैसे आपको मालूम है माता पिता की सेवा ही करना चाहिए ना। तो यहाँ तक बधाइयाँ शुभकामनाएं दे रहे हैं और प्रोग्राम आप सुबह अभी भैया देव खास करके जो आपने गुजारिश किए हो और विनती की हो तो ज़रूर मैं आपके लिए प्रस्तुत करेंगे इस नंबर के बाद में।
1: ये दुनिया बना
0: भैया चांद रघुनाथ जी
1: फिर चलाना बस
0: करीम क्रम सुधे हो ये महेंद्र कपूर जी की आवाज।

भगवान प्रकृति क्या बना है दुनिया में हम कभी नहीं समझ ये पाएंगे ना, जान भी नहीं पाएंगे, फिर भी जिंदगी जीते चलो हमारी प्रिय। और दोस्तों यही तो है पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, जहाँ पे आप चुन रहे और आपके साथ आप जो दे रहे हो बहुत ही खुशी की बात है। देवेंद्र सिंह शिवनाथ उन्हीं की आवाज़ में ये खास सिलेक्शन है। आप एक हिट स्टेशन पाहुन नुल सुईफन तख दरी तुम्हें शस्त्र तुम्हें तख सुईफन सुईफन तख

सपने ही अंदाज में, और ये दिल की बात है, कभी ऐसा कीजिए ना, हाँ, वही मिलेगा।

आवाज कलाकार दविंदर सिंह जी, दविंदर सिंह शिवनाथ आप एक हिट सेशन।

आजमा कर कभी देखो ना। होने वाली यही है कि जख्म जब मेरे सीने की बाहर जाएगी, आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएगी। ये मत पूछना कि किसने दर्द दिया, वरना कुछ अपनों के चेहरे भी उतर जाएगी ना भैया। और यूं ही जो है खास आवाज जो है और देवेंद्र सिंह शिवनाथ मधुर आवाज

दविंदर सिंह शिवनाथ जी ने। और आप ही से कहता हूँ कि ऐ दिल मत कर इतना मोहब्बत किसी से, इश्क में मिला दर्द तू सह नहीं पाएगा, टूट कर बिखर जाएगा, टूट कर बिखर जाए अपनों के हाथों से। किसी ने तोड़ा ये भी किसी से कह नहीं पाएंगे, और इसीलिए आपको ये मैं सुनाना चाहता हूँ, आप ही ने बनाए हो तो देखो। साई जो लिए हो, साई जो लिए हो, हाँ फिर से, साई जो लिए हो तो नाचना पड़ेगा ना।

हमारी भाई जो है और खास कलाकार से ये नंबर सुन रहे हो, बाहुन पे आप चुन हैं, आप ही किस सेक्शन है? हाँ दोस्तों,

ये संगीत की कलाकार हो दोस्तों, क्या कहूँ मैं, अपनी अपनी कला, अपनी अपनी पहचान। सरस्वती माता जो है इन लोगों के कंठ विराजमान कर रहे, विजय विराज रहे, और जो है ये जिंदगी हमारी दोस्तों, उसके बारे में ये राजेश शिवनंदन क्या कहता है।

तो यही घड़िया, यही पल जो है याद आता है ना, यू ही। और आपसे कह दूं, रजेश कह गया, मैं नहीं, रजेश संगीत में। हाँ भाई, इरेन डंकवेल यानी यू का

श्री घोषाल और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। फ्रॉम द मूवी बेवफा से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, और आपको सुनाने वाले हैं अभिजीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी बेवफा से हमने पेश किए हैं इश्क छुपता नहीं छुपाने से। एक और गीत हम पेश करेंगे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से आप सुनेंगे मैंने सोच लिया।

अभी आप सुन रहे थे मैंने सोच लिया फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते हम प्यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया है कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

बार शानू के साथ में अलका यज्ञिक आपको सुनाने वाले थे हम यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया है। वो लड़की बहुत यार आती है फ्रॉम द मूवी कयामत से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं और आपको सुनाने वाले हैं कुमार शानू के साथ में अलका याग्निक।

वो लड़की बहुत याद आती है। अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू के साथ में अलका याग्निक, आपको सुनाने वाले थे। भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा से आप सुनेंगे

अभी आप सुन रहे थे भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आपके प्यार में हम संवरने लगे अब का यज्ञिक आपको सुनाने वाले हैं।

नमो नमः। हरिओम एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रेलो आप लोग साथियों।

कौन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार, नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आज भी को भी हरि ओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन कृष्णदत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोतागणों आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम 3 यूनिट 20 सेशन 20 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूँ साथियों। ये यशो मिल लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। जहाँ पर भी हो, जिस साल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्यार और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है। मैं थिल फी लश्तर प्लेजर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेबलाइजर या इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फरमान डॉक्टर थोड़े कंटोर यूरिन ऑफ द फॉल्ड टेलीफोन नंबर कंटोर 0703562047 और स्टूडियो का तार का नंबर है 0703562077। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो। एनी तो फरखीत है उनसे क्वालिटी इज ऑलवेज यू गारंटी एंड नेचुरली नेचुरली नेचुरली फूलते सिख ऑलवेज लेकर दरबाई फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। टॉक हमसे पहले आप श्रोताओं ने कति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे, जो खास करके विजयंती बहन जी ने आप श्रोताओं के सेवा में पेश की। इस तौर तरीक से विजयंती बहन जी आप सभी को सदियों से सेवा करती आ रही है। ये यशो उम्मीद है साथियों की उनकी पेश किया हुआ प्रोग्राम आप जरूर को आप सभी को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद फूल टीम की तरफ से विजयंती बहन जी, और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ रात्रि एंड टॉचिंग से। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं। हो सकता है कि आप विवाह संस्कार की तैयारियों में भी लगे हो। जो भी खुशी का दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। बीमार लाचार या आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर बिजली दुआ करते हैं कि हम जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए और जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु। ये मत भूलना है। और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को भी रोजाना सुनते रहना फन हर्त बीज खराब। कामयाब हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां एंड फॉर ऑल खास डोर बंधु। और हो सकता है कि आप आज या कल कामयाब नहीं हुए हो, तो चिंता के कोई बात नहीं है। मोर्ख स्वीर दख दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ ट्रव जोर तोर से बढ़ाते रहना और कोशिश भी साथ ही साथ जारी रखना यारो। देखो मेहनत तो है दौलत के यारिया ना, तो हो सकता है कि कामयाबी भी जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आपके कदमों को भी चूम सकते हैं। कोशिश जारी रखना, नेवर गिव अप,
brother Sisa. So lobby lobby and blessings to all of you. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. Dit is mijn premier sweater. Hamare voetien kieder zee zo zwaar getampt. Fijne vakantie. Blijf luisteren naar Vagen Hindustani Radio. You gonna like it. En dat meen ik ook hoor. Or hoe sakta hai na ki aap desh ko chhod ke videsh yatra pe ja rahe hain to aapko bhi ek shubh yatra fine vacancy geniet ervan tamam log sunte hain Faun Hindustani radio ko internet ke lehro dwara op een laptop tablet of smartphone is ook mogelijk hè to aap bhi sunie hum logo ko zo bent u en blijft u van alles op de hoogte van uw favoriete radiostation. En dat is natuurlijk maar in Den Haag, circa. The one and the only Faun Hindustani Radio. 24 hours at your service, me guru. साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूँ वही शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ एक फिल्म ललकार 1972 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरु का बादशाह रैकिंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रवि साहब जी क्या गा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं और सदा कहते ही रहेंगे कि हैव टू नास्ताल्ट इतलीफ हैं बंधु कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम बुधवार का रात्रि का संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम खलिंग में गीत और गजल आउट इज गोट और उसके बाद आप नगमे सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किए हैं बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं शेर शायरी भी है तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 10:30 बजे रात्रि तक चलेगा तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना

मुस्कालो मुस्कुरालो महफिले सजालो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो साथियों, आज का इस हसीन रात्रि का प्रोग्राम मैं शुरुआत करने वाला हूँ एक अति सुंदर रागा के साथ। था ये यशोदा फ्रॉम द मूवी मॉर्निंग मुरागा, और कंपोज किया है थोड़ी रगम राग में, और गाने वाली है मलकाए हुस्न और मलकाए संगीत जावेद अख्तार का। ये जो है गाना वाइफ, द ब्यूटीफुल एंड द बरूंड एक्ट्रेस शबाना आजमी जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप ये अति सुंदर बयान सुनिए।

क्या बात है, माइंड ब्लोइंग रागा में ये मॉर्निंग रागा फ्रॉम द मूवी, ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, कंपोज इन रागम राग और सुनाई मशहूर अभिनेत्री द ग्रेट शबाना आजमी जी कोरस के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुने, 22 मिनट गुजर चुका है, 8 बजकर बुधवार रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, संगीतकारों का दास्ता नाम कार्यक्रम में लेकर चलते हैं एक महान गायक, म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर द ग्रेट दादा हेमंत कुमार का बनाया हुआ ये अति सुंदर बयान जो अब वो खुद गाया है क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के साथ, लेखक एस बिहारी के अल्फाजे, फ्रॉम द मूवी हिल स्टेशन 1957, नई मंजिल नई राहें, नया है कारवां अपना, ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

de Fouzon, Wonder Fouzon, compose ante sang by maestro Dada Hemant Kumarji uit de film Hill Station 1957, zat der heet die Queen of Melody, Lata Ji. Pound Hindustani Radio pe aap chun hai saathyo, budhwar ka raatri ka program aap sun rahe hai, Geet aur Ghazal Oat, is Gold Sangeet Karak ka daastan naam karyakram, 4 मिनट बाकी है 8:30 बजने में. अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है एक फिल्म अनुपमा 1966 और एक और जबरदस्त धुन जो दादा हेमंत कुमार जी ने बनाया था भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के लिए. और ये तो बहुत ही चला ये नगमा उस जमाने में एक सुपरहिट सॉन्ग, अभी तक लोग सुनते हैं. तकरीबन 20 मिलियन व्यूज भी मिल चुका है जब से ये नगमा को YouTube पे धरा गया था 2011 में. वन ऑफ माई फेवरेट लता जी का धीरे धीरे मचल.

0: उठो गाओ।
1: चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाने।
0: अभी तो बहुत वक्त है, गीत अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होता। गाओ।
1: मुझे बहुत दुख होता है, तुमने मैंने अच्छी तरह से गाना सीखा।
0: जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए अरुणा, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक नहीं।
1: मैं बताऊं, ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी?
0: कहां से सीखी?
1: सीखी भी नहीं,

A masterpiece of composing by Dada Hemant Kumar uit de film Anupama 1966. Alfa Zeta Kaifi Asmijika or Awas. The one and only Bharat Ratna Queen of Melody Lata Mangeshkar ji ka. 2 minutes guzar chuka hai saathiyo 8:30 bajkar agla bayan कुछ दादा हेमंत कुमार के याद में नगमे आप सुनेंगे और एक नॉन फिल्म सॉन्ग जो दादा हेमंत कुमार जी ने गाया था म्यूजिक दुर्गा सेन ने दिया है ये अति सुंदर बयान सन और क्लासिक नंबर नोइट फोर को मैंने फिल्म मिलके सुनते हैं दिल को लेकर तुम किनारे हो गए

beautiful song, gezongen en gecomponeerd door Dada Hemant Kumarji, live gezongen. तेरा मिनट रह गया है साथियों, बचने में अगला बयान एक बार फिर वही महान फनकार जिसके याद में ये छोटा मोटा प्रोग्राम मैंने तैयार किया है, द ग्रेट दादा हेमंत कुमार जी, तुमने मुझको सदा जलाया, क्या बात है। मिलकर सुनते हैं ये छोटा सा गजल, कंपोज एंड अरेंज बाय मैस्ट्रो दादा हेमंत कुमार, ook door hem gezongen en geschreven door जबरदस्त लेखक उस जमाने का मधुकर राजस्थानी।

die zonder Bayani gezongen en gecomponeerd, also bij Dada Hemanti Kumari uit de jaren 52 en geschreven door Madhukar Rajasthani. Dus minuut nu kia, hey Sathio, nou kuch nahi mein agla bayan ki taraf badhte hai. एक जबरदस्त सॉन्ग है एक बार फिर दादा हेमंत कुमार के मधुर आवाज में और उन्हीं के कंपोज किया हुआ है अति सुंदर बयान एंड इट केर गेस्क्रीवन डोर द ग्रोट स्क्राइवर आउट इंडिया गुलजार साहब जी ने अभी ना पर्दा गिराओ जरा ठहरो

कॉमन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है आप ही का मन चाहा रेडियो स्टेशन पर द वन एंड ओनली देन हाक्षर का फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर तबलाइस्त्रफिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाहन फाहन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाहन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट कराना चाहते हैं यारो, तो जरूर आप तार करें फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। And naturally, welcome boys and girls, social love and blessings to all of you. And naturally, bedankt voor het luisteren. जो भी रेडियो का काम हो देंक अन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। सभी जानकारी 07365 2247 पर आप तार करें। दफ्तर का तार का नंबर और स्टूडियो का तार का नंबर 07362 2277। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाहन हिंदुस्तानी आपका जो भी रेडियो का संदेश होना उपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हर देश भर में नहीं मिलेगा। जरा आप आजमा कर तो देख। Bent u nog een lid van Fahon Hindustani Radio, to guzarish binti nibidin kia ja raha hai, kia bhi jild se jild Fahon Hindustani Radio ka member bane, aur ko bhi banaye. Aapko to dher sare fayda hi fayda hai. Recent hai woh kaun se ek Fahon karaoke team waar heel veel zangers die bij ons omroepen in de studio live voor u gaan zingen. Hè? Stuk of 8 doen zeker altijd mee bij op onze optredens. Dus volg social media van ons en onze omroepers. Dan hoort u zeer zeker wanneer wij binnenkort voor u live gaan zingen. Wabi! फाहन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रोको भी बनाए और जो छोटा सा और मोटा सा ये फाहन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार जो बन चुका है और जो बनते जा रहा है आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए। सभी जानकारी आप तार करें अपने 07365 2277 पर एन फ्राग नार ऑनसे टीम लीडर वन एंड ओनली मास्टर जॉनी नंबर वन। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना साथी और रिक्लाम बनाते रहना क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। और इसके लिए आप सभी को हमारे फुल टीम के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और के मुताबिक एक हिदम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम के तरफ। बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म राजा जानी तक जो रिलीज किया गया था नेक दिन ट्विन सिकंदर ने। और इस मूवी में द ग्रेट एक्टर द ही मैन द हिट मैन धर्मेंद्र जी ने काम किया है अपने ब्यूटीफुल सेकंड वाइफ द मलकाए हुस्न ब्यूटी क्वीन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के साथ। महान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत है, आनंद बख्शी के अल्फाज़े है और कुछ गाने बीते हुए हफ्ते में सुना चुका था आप सभी को और कुछ गाने इस फिल्म में से रह गया है सुनाने को। तो एक ही दम एक ब्यूटीफुल सॉन्ग रख चुका हूँ प्लेयर में आप सभी के लिए सुनाने को। Eén film Raja Jani, 1972. Aur late hai program mein Bharat Ratna, Queen of Melody, hamare Bharat ke swing Saraswati Ma ji ke beautiful awaaz mein aap sunenge. Mubarak ho tujhe ae dil.
a beautiful song sabhi sathiyon ke naam।

Beautiful song, Mubarak, ho tujhe ae dil, from the movie Raja Jaane, 1972, music director Lakshmikant Pyare Lal ke saansh par, Alfa Zethanand Bakshi ji ka, aur awaaz Bharat Ratna, the great Lata ji ka. 14 मिनट गुजर चुका है 9:07 साथियों और आप चुन है आप ही का हैप्पी हैप्पी रेडियो स्टेशन पर हमारे दिनाक्षर का फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पर अब प्रोग्राम चल रहा है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम नगमे आप सुन रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द हीमैन द ग्रेट हिटमैन धर्मेंद्र जी ने काम किया है और हम पहुंच चुके हैं फिल्म राजा जानी तक. अगला बयान टाइटल सॉन्ग है उस जमाने में 1927 तक में ये नगमा किशोरदा के आवाज में क्या हलचल मचाया था हमारे सूरीनाम देश में. जानी ओ जानी

Beautiful song, title song, also from the movie Raja Jani. Haseeno ka pujari aur sangeetkar ka badshah aur shehnsha, the one and only किशोर दाजी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। कॉम्पोनेट दो और महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारे लाल।

तो साथियों सभी नगमे आज फिल्म राजा जानिनी का आप सुन चुके। अब लेकर चलते हैं एक मूवी जो ऑल्सो रिलीज किया गया था इन 1970 में, फिल्म ललकार। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है मलकाए हुस्न द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस माला सिन्हा जी के साथ। राजेंद्र कुमार जी इस फिल्म में काम किया है कुमकुम एंड कॉमेडियन देखा जाए, और बलराज सानी जी इस फिल्म में भी काम किए हैं। महान लेखक हसरत जयपुरी इंदिवर और कुलवंत जानी तीन लेखकों ने ये फिल्म में काम किए हैं, गाने लिखे हैं। और महान संगीतकार जोड़ी द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी के साथ है। तो एक जबरदस्त डुएट आप सुनेंगे और सुनने को जा रहे आप सभी को एक बार फिर सुरों का देवी डगड़े लता जी साथ दे रहा है द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी। कुलवंत जानी का लिखा हुआ ये सुपरहिट सॉन्ग जो इतने चले यार सेवन तक में जो रिलीज किया गया था, खास करके फरमाइश विवाह संस्कारों पे और महफिलों में ये गाने डुएट के रूप में गाए जाते थे उस जमाने में। सुपरहिट सॉन्ग बोल मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार है, अ मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। और अल्फाजे क्या है जरा ध्यान से सुनिए, अ ग्रेट लव सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

बोल मेरे साथिया, कितना मुझसे तुमसे प्यार है। अति सुंदर बयान uit de film Lelkaar 1972. Kalyan Jianan ji ke saaj par aur gaane wale the Lata ji aur Rafi saab ji. Faun Hindustani Radio pe aap chune yaro, 5 minit baki hai 9:30 bajne. अगला बयान मेरे महबूब मेरी बात, अति सुंदर सॉन्ग है, कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जियानंद जी, और इस बार फांसे है हसरत जयपुरी जी का। आवाज है उस जमाने का ग्रेट सिंगर द ग्रेट मनहर उदास जी, और खूबी के बात यह है कि मनहर जी का साथ दे रही है द ग्रेट मलकाए हुस्न ब्यूटी क्वीन माला सिन्हा जी, जो एक अच्छी सिंगर भी थी, साथ साथ अख्तर के साथ महफिलों में भी गाती रहती थी जैसे कहा जा रहा है। तो मिलकर सुनते हैं ये अति सुंदर बयान मेरे महबूब मेरी बात।

0: क्या बात है माला सिन्हा और मनहर उदास जी के आवाज़ों में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना कॉम्पोनेड और ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी अल्फाजे था हसरत जी का एड फिल्म ललकार 1972 तरफ देखता हूं तो 9:30 बजने वाला है। साथियों अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और इस बार भारत रत्न लता मंगेशकर जी को लाते हैं प्रोग्राम में कल्याण जी आनंद जी के साथ पर कुलवंत जानी के अल्फाजे एड फिल्म ललकार। साथियों के साथ मैंने कहा ना ना ना
1: मैंने कहा ना ना ना ना ना
2: फिर
1: उसने कहा हाँ हाँ हाँ
2: फिर

ब्यूटीफुल सॉन्ग लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में साथियों के साथ गकंपोनेट डोर ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी अल्फाज कुलवंत चानी का और फिल्म ललकार में से ये तीसरा बयान आप श्रोताओं ने सुना।

साथियों, 5 मिनट गुजरने वाला है, 9:30 बजकर वक्त हुआ है ना अब कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर की चाहने वालों के लिए। कुछ ताजे ताजे भेजा है भाई भूपेंद्र जी, जो तकरीबन कुछ 12 साल से मुझे मुंबई सिटी से लिख लिख कर भेजते रहते हैं, और इस बार कुछ साकी और शराबी के बारे में। अर्ज क्या है ये साथियों की, लफ्जों के फसाने ढूंढते हैं हम लोग, लफ्जों के फसाने ढूंढते हैं हम लोग, लम्हों में जमाने ढूंढते हैं हम लोग। तू जहर ही दे शराब कहकर साकी, तू जहर ही दे शराब कहकर ऐ मेरे साकी, जीने के बहाने ढूंढते हैं हम लोग। महफिले इश्क सजाओ तो कोई बात बने, दौलते इश्क लुटाओ तो कोई बात बने, जाम हाथों से नहीं है पीना मुझको, जाम हाथों से नहीं है पीना मुझको, कभी आंखों से पिलाओ तो कोई बात बने। क्या बात, तेरी याद ने हमें जीने ना दिया, तेरी याद ने हमें जीने ना दिया, चैन से हमको अब मरने भी ना दिया, हम पीते हैं तेरी याद में जालिम, हम तो पीते हैं तेरी याद में ऐ जालिम, पर इस दुनिया ने हमें पीने ना दिया। तोहफे में मत गुलाब लेकर आना मेरी जान, तोहफे में मत गुलाब लेकर आना, मेरी कब्र पर मत चिराग लेकर आना, बहुत प्यासा हूं बरसों से मैं, बहुत प्यासा हूं बरसों से मैं, जब भी आना शराब लेकर आना। पीने दे शराब मस्जिद में बैठ कर ऐ मेरे गालिब, पीने दे मुझे शराब मस्जिद में बैठ कर ऐ मेरे गालिब, या वो जगह बता जहां खुदा मौजूद नहीं है मेरे गालिब। साकी देख जमाने ने कैसी तहमत लगाई है, साकी तू देख जमाने ने कैसी तहमत लगाई है, आंखें तेरी नशीली है, आंखें तो तेरी नशीली है, शराबी मुझे कहते हैं, ये भी होता है यारो। तो ये था कुछ शेर, आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा और कुछ सुनाने को। बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ, आप तो सभी जानते हैं ये हमारा जो सॉन्ग है ओपनिंग सिलेक्शन का, प्रोग्राम का शुरुआत, ये भी इस फिल्म से निकला है ना, आंच गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो। तो ये गाना 2 फैशन में इस फिल्म में फोर आया था, पेश किया गया था, एक सेट और एक हैप्पी फैशन। तो आप ये हैप्पी फैशन तो हर हफ्ते 2 बार आप लोग सुनते हैं, लेकिन एक बार मैं फिर सुना देता हूँ, क्योंकि फिल्म ललकार का ये गाना है, धर्मेंद्र जी का फिल्म का गाना है, तो सुनाना तो पड़ेगा ना। तो एक बार फिर ही सही, उसके बाद सेट सॉर्ट फैशन भी मैं आप सभी को सुनाऊंगा। रवि साहब और साथियों के आवाज में कंपोज्ड Gecomponeerd door natuurlijk de gebroeders Kalyanji Anandji uit de film Lalkaar, 1972, Us Zamane Ka Superhit Movie Tha, aur lekhak hai is gaane ka The Great Endeavor Ji. Beautiful Remembering Song, aap sabhi priye priye saathiyon ke liye ek baar phir sahi.

0: गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो फ्रॉम द मूवी ललकार, रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, कॉम्पोनेट द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी साथियों के साथ अल्फाज़े था इंदिवर जी का। अगला बयान फ्रॉम द सेम मूवी ललकार, और एक बार फिर सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, कुलवंत जानी के अल्फाज़े ललकार इस द मूवी ने।
1: ओए चन जी जरा मुड़ के तो

जरा मुड़ के तो देख कुड़िये आते जाते एक फिल्म ललकार 1972 रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एक आखिरी सॉन्ग रह गया है एक फिल्म ललकार सुनाने को, मैंने वादा किया था द सेट फैशन आज गालो मुस्कुरालो को सुनाने के लिए आप सभी को रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में। दर्द से भरा हुआ ये नगमा है, मिलके सुनते हैं एड फिल्म ललकार कॉम्पोनियर द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और अल्फा से है इंदिवर जी का, जरा दिल को संभाल लीजिए।

Scuralo, Mephile Sajalo from the movie Lelkar, the set version of Sotaunisuna, Surukabacha, Revisabjike, beautiful Madhur Awazmi. साथियों सभी नगमे फिल्म ललकार का मैं आप सभी को सुना चुका हूं। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो रिलीज किया गया था ऑल्सो इन 1927 में, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, फिल्म अनोखा मिलन। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है द ग्रेट एक्ट्रेस प्रोनोती जी के साथ। महान अभिनेता द ग्रेट दिलीप कुमार जी ने इस फिल्म में भी काम किया है, केशव मुखर्जी, अभी भट्टाचार्या और महान संगीतकार सलील चौधरी सलील दा के साज और संगीत है, और सभी गाने लिखा है उस जमाने के महान लेखक द ग्रेट योगेश जी। फिल्म अनोखा प्यार अनोखा मिलन होना चाहिए, फिल्म अनोखा मिलन से आप अब नगमे सुनेंगे। कति सुंदर बयान रख चुका हूं प्लेयर में आप सभी को सुनाने के लिए। पद्म भूषण मन्ना डे जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को ये अति सुंदर बयान। कॉम्पोनेट और सलील चौधरी, बंधुरे ये मंडोले बोले क्या रे कोई ना जाने।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूँ साथियों, तो 2 मिनट व्यतीत हो चुका है 10:03। 3 यूनिट 20 सेशन 20 का ये रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एंड नेचुरली वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोशल लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बेडंक फॉर हेट लोइस्ट्रन। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश से जरूरी खबरें इस तिहारे डैंक अनफाहन हिंदुस्तानी रेडियो। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें टेनिस कंतूर उर भरमान अख्तर फ्रेडा ओप 0703562247 कंतूर का नंबर है। स्टूडियो का तार का नंबर है 0703562247। तो जो भी रेडियो का काम हो ना, डैंक अनफाहन हिंदुस्तानी रेडियो फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना। हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए है। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एंड रिसेंट है वो ओक उनसे एक कारा ओक संग कृपया फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और फिर ओम रूपर्स लाइफ फॉर यूरी खान को सिंगन। Volg onze social media's en omroepers, dan hoort u of ziet u zeer zeker wanneer wij binnenkort voor u gaan optreden. En dan bent u ook van harte welkom natuurlijk. Hè. Kom en steun de zaak. To Abhi Akar is jo chota aur mota sa faun Hindustani radio ka parivar ban chuka hai na, usme Abhi Akar shamil ho jaye. Sabhi jankari iske bare mein aap tar kare apne 7365227, dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze maestro, de teamleider van faun Hindustani radio, the one and the only maestro Johnny number one. En natuurlijk bent u van harte welkom. Wat ik moet hebben gekregen, dan wordt het program getref. Kutje nek meer regia hij zoen. En ik uit de film Enoka Milan uit 1972. Ze gaan het wel regia. Ik laat bij aan Man Namore Sata, पुराने जमाने के मशहूर गाने वाली सबिता चौधरी जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज एंड अरेंज्ड बाय सलील चौधरी जी।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना, क्या बात है। द फिल्म अनोखा मिलन 1972, उस जमाने के मशहूर गाने वाली सबिता चौधरी जी के ब्यूटीफुल आवाज में, कंपोनेड और सलील चौधरी जी। अगला बयान फ्रॉम द सेम मूवी अनोखा दान, और ये क्या हो, अनोखा मिलन होना चाहिए। हेल फिर फरकेरे टेक्स्ट ऑफ द फरकेरे प्लाट्स गेप्लाट्स, गेबेट फाक बाय यूट्यूब हॉर। गाने का बोल है, हमें याद कभी तुम कर लेना, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी सलील चौधरी के इस साज पर। द फिल्म अनोखा मिलन

देखता हूं तो 14 मिनट गुजर चुका है, 10 बजकर अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं और एक बार फिर सलील चौधरी के साथ पर सबीता चौधरी के आवाज में तोरो सोंदो एक नेपाली सॉन्ग आप सुनेंगे। फिल्म अनोखा मिलन 1970।

अति सुंदर नेपाली सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना, तोरो सोंदो सविता चौधरी के आवाज में, कंपोज एंड अरेंज बाय मैस्ट्रो सलील चौधरी, एड फिल्म अनोखा मिलन। अगला बयान मत भरी ये हवाएं, एक दूसरी अंदाज में आप सुनिए लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में, कंपोनियर दोर सलील चौधरी जी और अल्फाजे है महान लेखक डेग्रेट गुलजार जी का।

Hawaii uit de film Anoka Miller 1972. Zie je die zonder bijna op Srotauni Suna. Toen zat je, ze hebben nog meer uit de film Anoka Milan ka aap sun chuke to kuch aakhri sher shayari ho jaye na 8 minute reh gaya hai 10:30 bajne mein aur waqt bhi dheere dheere kareeb aa raha hai arz kiya hai saathiyo kuch aakhri sher se यूं तौहीन ना कर शराब को कड़वा कहकर क्या बात है यूं तौहीन ना कर शराब को कड़वा कहकर जिंदगी के तजुर्बे शराब से भी कड़वे होते हैं कहते हैं पीने वाले मर जाते हैं भरी जवानी में कहते हैं कि पीने वाले मर जाते हैं भरी जवानी में हमने तो देखा है बुजुर्गों को जवान होते मैखाने में पानी से प्यास ना बुझी तो मैखाने के तरफ चल निकला सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से सोचा था शिकायत करूं तेरी खुदा से पर खुदा भी तेरा ही आशिक निकला मैं खाने सजे थे जाम का था दौर मैं खाने सजे थे जाम का था दौर जाम में क्या था ये किसने किया था गौर जाम में गुम था मेरे अरमानों का और सब कह रहे थे एक और आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में साथियों कुछ नशा तो आपकी बात का है कुछ नशा तो आपकी बात का है कुछ नशा तो धीमी बरसात का भी है हमें आप यूं ही शराबी ना कहिए हमें आप यूं ही शराबी ना कहिए इस दिल पर असर तो आप से मुलाकात का है ये था कुछ आखिरी शेर और आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक आखिरी सॉन्ग जो मैं सुनाने वाला हूँ आप सभी को एक फिल्म अनोखा दान अनोखा मिलन एट 1972 छोटा सा एक कुप्लेट

माना कि है जिंदगी ये सफर uit de film Anokha Milan 1972 gecomponeerd door maestro Salil Chowdhury aur Ghanewala hamare mahan gayak Bollywood film industry ka Padma Bhushan Manna Dey ji sathiyon ke saath तो हमारे प्रिय प्रिय सज्जनों यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। मैं आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं यारों की जिस तौर तरीके से मैं आप श्रोताओं को कोशिश किया सेवा करने में ये आशा उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया यारो तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे में आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ सरनामी संगीत लेकर और कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे आप सभी इजाजत दे, हमारे बाद आप एक छोटा सा प्रोग्राम सुनेंगे हमारे टीम लीडर के जरिए मैस्ट्रो जॉनी नंबर 1 और 11 बजे के विज्ञापन और देश विदेश का समाचार के बाद आप सुनेंगे आज का एक हेरहालिंग फनेट फन मिडाग प्रेजेंटेड न्यूज डोर ऑनसे एयरवार्ड कोलेगा एंड ग्रोटे ब्रदर द वन एंड द ओनली ऑनसे जर्नलिस्ट एंड कोरेस्पोंडेंट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो बड़का भैया मैस्ट्रो रोमियो होस्ट के जरिए और उसके बाद खानुआ लेकर अब नार ऑनस नख्त प्रोग्रामेरिंग में फिरस्किलंदे उम्रूपर्स। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, हमें आप सभी इजाजत दे और जाते जाते तो हमेशा की तरह कुछ न कुछ गुनगुना देता हूँ और आज एक छलांग लगा देते हैं वही महान फनकार दादा हेमंत कुमार के याद में।

0: औरो बड़ी अरमान से लिखा है बलम तेरी कसम फिल्म मल्हार का ये गाना नेखतिन एन फैफ्तक का जिसको जिस फिल्म में लता जी और मुकेश जी गाया है और ये गाना तो और ये गाना जो अब हम चलाने जाते हैं भैया ये गाना जो है बहुत पुराना गाना है गीता दत्त शैलेंद्र का और इसमें हेमंत कुमार ने भी इस गाना को गाया है। दादा हेमंत कुमार ने मुझको तुम जो मिले तब वो क्या हुआ जहां भी मिल गए।
1: माशिन आज मैं बहुत बहुत खुश हूं।

जहां मिल गई दादा हेमंत कुमार का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है मालहा सिन्हा ने गीता दत्त के साथ दोस्तों। और ये गाना है तुम तो प्यार हो सजना और ये फिल्म है भाई शहरा का फिल्म है और शहरा का फिल्म में क्या कहते आओ मिलके।

तुम तो प्यार हो हो सजनी, और लता और मोहम्मद रफी जी ये गाना आपको सुनाए। फिल्म शहरा का ये फिल्म लिखत इंद्रिय शस्त्र का, और ये नया गाना जो नहीं है पुराना गाना लिखत निघ्न शस्त्र का है, और मुकेश जी इस गाना को गाया है फिल्म विश्वास का ये गाना। और मिल के सुना जाए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों।

और दोस्तों चांद की दीवार न तोड़ो और प्यार भरा दिल तोड़ दिया फिल्म विश्वास का ये गाना निहत होंदन निहने सस्तक का। और दोस्तों ये भी एक पुराना गाना हम चलाते हैं फिल्म विजयंती माला राजेंद्र कुमार का ये फिल्म है साथी का ये गाना और ये हम यहाँ से रेडियो फाहुन के माध्यम से चलाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों और आओ मिलकर सुना जाए कि ये क्या गाते हैं।

मेरा प्यार भी तू है और ये बहार भी तू है, फिल्म साथी का ये गाना हमने निकाला है और जिसमें काम किया है विजयंती माला और राजेंद्र ने दोस्तों। और ये गाना है मोहम्मद रफी जी, परमाशी मोहम्मद रफी जी इस गाना को गाया है लक्ष्मीकंद प्यारे लाल के साथ में। और ये गाना है फिल्म दोस्ती का और दोस्ती के गाना उसने सुनना चाहते हैं तो यहाँ से हम चला देते हैं और यहाँ से मेरे दोस्ती मेरे

और दोस्तों मेरी दोस्ती और मेरा प्यार, और इस गाना को मांग किया है और वो है सुरेश हरि प्रसाद भैया है नकन, बर्तन नर्तन धोई के भैया एकदम तैयार है। और बोले जॉनी ये गाना है फिल्म नूर जहां का, ये गाना है आओ मिलकर और हम सब और सुना जाए।

फाहम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, मैं आप सबको स्वप्न विज्ञान में से कुछ वृत्तांत सुना रही हूँ, यानी सपने, कि जो लोगों ने सपने देखे और उनको सपने आए उनका क्या महत्व था। पिता द्वारा पुत्रों का कत्ल। मैनचेस्टर शहर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि उसका पति उसके दो बच्चों को चेस्टर सिटी के भयानक खंडहर में जान से मार रहा है। वह चिल्लाकर नींद से जाग गई और पुलिस को साथ लेकर खंडहर ढूंढ निकाला। तलाश के बाद वहां से बच्चों की हड्डियां प्राप्त होने पर पति को जेल हो गई।

अब मैं एक और वृत्तांत आपके लिए रखती हूँ, मृतक पुत्र के जलने की चेतावनी। एक दिन रात्रि में सिंहमांड फ्राइड के एक मित्र के बेटे का देहांत हो गया। सुबह अंतिम संस्कार हेतु रखे शव के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और पहरेदार को वहां छोड़कर पिता दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए, जिसने एक स्वप्न में देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र उसके पास खड़ा हुआ कह रहा है, क्या मुझे ऐसे ही जलने दोगे? पिता ने जागकर बाहर आकर देखा तो एक मोमबत्ती गिरने से शव का कान जलने लगा था। थोड़ा विलंब होता तो शव के साथ वह मकान भी जल जाता।

सुनने वालों, अब मैं एक और आपको सपने के बारे में बताती हूँ जो टीपू सुल्तान को आया। टीपू सुल्तान मुगल बादशाह हुए हैं, एक सुल्तान हुए हैं बहुत बड़े, टीपू सुल्तान तथा कांच की खान। टीपू सुल्तान ने रात में देखा कि एक बूढ़ा कांच का एक पत्थर लेकर उसके पास आया और बोला, सेलन के पास जो पहाड़ है वहाँ कांच की खान है, यह कांच मैं वहीं से लाया हूँ। इस तरह सुनते ही उसकी नींद खुल गई और वहाँ कांच की खान मिल गई।

सुनने वालों, एक डॉक्टर फिशर हुए हैं, वो कहते हैं कि एक स्थान पर प्रेत आत्मा का होना, जब एक स्त्री एक विशेष स्थान पर सोती थी तो उसे एहसास होता था कि उस पर कोई झपटा रहा है। तलाश करने पर पता चला कि यह स्त्री जिस स्थान पर सोती थी उस स्थान पर एक मनुष्य ने एक नवयुवना का गला घोंटकर खून किया था। स्थान विशेष में मानवीय विद्युत कंपन लंबे समय तक रहते हैं। शमशान की भयानकता एवं देव मंदिर की पवित्रता उसकी साक्षी होती है।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ भगवान महावीर पर 14 स्वप्नों का प्रभाव। भगवान महावीर बहुत बड़े भगवान हुए हैं, उनको 14 सपने आए। भगवान महावीर के जन्म के पहले रानी त्रिशाला ने 14 स्वप्न देखे थे। पहले में ऐरावत हाथी, दूसरे में सफ़ेद बैल, तीसरे में शेर।

चौथे में लक्ष्मी जी, पांचवें में फूलों की माला, छठे में पूरा चांद, सातवें में सूर्य दर्शन, आठवें में पानी से भरा कलश, नौवें में नील सरोवर, दसवें में बहता सागर, ग्यारहवें में सिंहासन, बारहवें में देवव्रत, तेरहवें में रतन राशि, चौदहवें में धुआं मुक्त अग्नि। भगवान महावीर का जीवन इन 14 स्वप्नों के अनुकूल, स्वप्न के हर प्रतीक के अनुसार इस प्रकार था। हाथी धैर्य मर्यादा, एक बड़प्पन का प्रतीक, महान धर्मात्मा, अनंत शक्तियों का स्वामी, मोक्ष प्राप्त करने वाला, अनासक्त ज्ञानी, सुख शांति का उपदेशक, महान गुणवान, शांत गंभीर, त्रिकलाज्ञ एवं देवता। महावीर जी, भगवान महावीर बहुत अच्छे गुणवानी, संतोषी और एक अच्छे भगवान हुए हैं।

ये है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, आप सब सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, पिछले बार मैंने आप सबको फड़कने के बारे में बताया था कि अंग फड़कते हैं तो उन सब का क्या मतलब है, जैसे सिर का फड़कना, नेत्रों का फड़कना आदि आदि। तो आज हम चलिए कंधों का फड़कना कि जब कंधे फड़कते हैं तो उसमें से क्या क्या लाभ होता है या हानि होती है। कंधों का फड़कना, जब दायां कंधा फड़कता है तो बहुत शुभ, शीघ्र ही धन, वैभव और सम्मान और बिछड़े भाई से मिलन होता है। और जब बायां कंधा फड़कता है तो रक्त या वात संबंधी रोग होते हैं। पीठ का फड़कना, जब दाई तरफ पीठ फड़कती है तो राज सम्मान मिलता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। और जब बाई तरफ पीठ फड़कती है तो अशुभ है, मुकदमे में लड़ाई में हार होती है। जब ऊपरी भाग का कंधा फड़कता है तो धन की प्राप्ति होती है। अब निचला कंधा फड़कता है तो बहुत से अनुयायी काम होते हैं।

घुटनों का फड़कना। सुनने वालों, हमारे घुटने जो हैं वो भी कभी भी फड़कने लग जाते हैं। जब दायां घुटना फड़कता है तो स्वर्ण प्राप्ति होती है, जब दाएं का निचला भाग फड़कता है तो शत्रु का सामना करना पड़ता है, और बाएं का निचला भाग फड़कता है तो कार्य पूर्ण होते हैं। सुनने वालों,

गर्दन का फड़कना। सुनने वालों, हमारी जो गर्दन है जिसे आप लोग नेक कहते हैं, वो भी कभी कभी फड़कती है। तो गर्दन के फड़कने से विदेश यात्रा उपरांत धन कमाकर कुशलतापूर्वक लौट आता है। कान का फड़कना। सुनने वालों, हम सब के कान भी कभी कभी फड़कते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई मतलब होता है। जब हम लोगों का दायां कान फड़कता है तो हम लोगों को शुभ समाचार मिलते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब हम लोगों का बायां कान फड़कता है तो प्रियजन से मिलन मेल होता है। जब हमारे कान का पिछला भाग फड़कता है तो मित्र शत्रुवाद व्यवहार करते हैं।

बोहों का फड़कना, सुनने वालों बोहें कहते हैं वैन ब्रो को, वो भी हमारी कभी भी फड़कती हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि वो कब फड़कती हैं। जब हम लोगों की दाई वैन ब्रो फड़कती है तो हमें इज्जत शोहरत मिलती है, जब बाई फड़कती है तो मित्र मिलन, अपने मित्रों से मिलाप होता है। गाल का फड़कना, जब गाल भी फड़कते हैं सुनने वालों, जब हमारा दायां गाल फड़कता है तो विलंब से स्वास्थ्य लाभ कि स्वास्थ्य में लाभ हमें देरी से मिलता है, और जब बायां गाल फड़कता है तो काम में विघ्न बाधा तथा चिंताजनक समाचार, कन्या का जन्म या कन्या से शुभ समाचार मिलते हैं। अब जो दोनों समान फड़कते हैं तो अतुल धन की प्राप्ति होती है, तो हम लोगों को ढेर सारा धन प्राप्त होता है सुनने वालों।

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सब सुन रहे हैं स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाक का फड़कना, सुनने वालों जब हम लोगों का नाक फड़कता है तो हमें क्या क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि हम लोगों का नाक कब फड़कता है। व्यवसाय की वृद्धि होती है, किसी से झगड़ा होता है, आने वाले संकट रोग की सूचना मिलती है, अनेक प्रकार से सुख मिलते हैं।

सुनने वालों, अपने शरीर के सभी अंग फड़कते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो कब फड़कते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ मुंह का फड़कना। हम लोग के मुंह भी फड़कते हैं सुनने वालों। समाचार मिलता है, सुखों की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। होंठ का फड़कना, जब हम लोगों के होंठ फड़कते हैं तब हमें सुख समाचार मिलता है, शत्रुओं से समझौता होता है, हितैषी का आगमन होता है कि जो हमारा कोई अपना जानने पहचानने वाला है वो हमारे घर पर आते हैं।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि भोजन करते समय कौन कौन से शगुन होते हैं और उसमें से कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। यदि भोजन करते समय सामने ही बिल्ली आ जाए तो शुभ नहीं होता, कुत्ते का रोना सुनाई दे तो अधिक अशुभ होता है। जब हम भोजन कर रहे हैं और कुत्ता रोता है तो वो शुभ नहीं होता सुनने वालों, अशुभ होता है। ग्रह क्लेश उपस्थित हो जाए, अन्न संकट है, रुदान का शब्द सुनाई दे, जब कोई रोता है तो स्वास्थ्य की हानि होती है सुनने वालों। उबकाई आने लगे, जब हमें खाना खाते खाते हम उबासी लेते हैं तो हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, तो उसका मतलब है पेट भर गया हमारा। कुत्ता भौंकने लगे, अनाज की चोरी होती है, जब कुत्ता भौंकने लग जाता है तो अनाज चोरी होने का डर रहता है। काली चिड़िया शरीर पर बैठ जाए, सामान्य जब काली चिड़िया कभी शरीर पर बैठ जाए तो वो ना हानि है ना लाभ है सुनने वालों। पकती रोटी अधिक जल जाए, अन्न नष्ट हो, जब हमारी रोटी बनाते बनाते ज़्यादा जल जाती है तो हमारे अन्न का नाश होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, जब हम लोग घर पर भोजन करते हैं तो क्या हमें जूते पहनकर भोजन करना चाहिए कि जूता खोलकर भोजन करना चाहिए कि जूते उतार के भोजन करना चाहिए? अब मैं थोड़ा सा वो आपको बताती हूँ सुनने वालों। जब व्यक्ति भोजन करता है तो अपने शरीर में एक विशेष ऊष्मा को संचित करता है। भोजन करते समय जो कैलोरी या ऊष्मा मुंह के द्वारा शरीर में जाती है तो उसमें एक विशेष विद्युत का निर्माण होता है। यदि इस विद्युत का पृथ्वी से संबंध हो जाता है तो उसे पूरा परिपथ मिल जाता है और वह जो भी भोजन करता है उससे पूरी शक्ति प्राप्त होती है। जब हम नंगे पांव बैठते हैं तो हमारे पैर पृथ्वी से स्पर्श करते हैं, फलस्वरूप हमें आर्थिक मिलती रहती है। परंतु जूते पहने होने पर चमड़ा विद्युत अवरोधक बन जाता है और भोजन करते समय जो ऊर्जा या विद्युत पैदा होती है उसे अर्थ ना मिलने के कारण उसका प्रवाह विपरीत हो जाता है और जो भोजन किया जाता है वह विषैला बनकर शरीर को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार जूते पहनकर भोजन करने वालों को गैस, कब्ज आदि रोगों की शिकायत बनी रहती है।

सुनने वालों, ये स्वप्न विज्ञान है। मैं आप सबको सुना रही हूँ सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं उन सब का क्या मतलब है, कि वो शुभ हैं कि अशुभ हैं। सुनने वालों, जब हम रात्रि में सोने जाते हैं तो जब हम लोगों को शंख ध्वनि सुनाई दे, बैल की हुंकार सुनाई दे, वीणा का शब्द सुनाई दे, तो उन सब का शुभ मतलब है कि वो सब अच्छी चीज़ें हैं। जब हम अपने बेड पर बैठते हैं या चारपाई पर बैठते हैं, अगर चूहा दिखाई दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, घर में प्रसन्नता का वातावरण हो तो वो भी लाभकारी है। जब सब घर के सदस्य हंसते हैं और हमें लाभ मिलता है, हम लोगों को अच्छी नींद आती है। सुनने वालों, अगर पत्नी की आँख में आंसू हो तो वो अपशकुन है। गीदड़ बोले या कुत्ता भौंके तो चोरी का भय रहता है। रात को जब हम सोते हैं सुनने वालों, अगर कुत्ता भौंके तो उससे हमें चोरी का भय रहता है। बिल्ली या कुत्ता लेटा हो तो अच्छा नहीं होता। घर की पालतू गाय सहसा रो पड़े तो वो अपशकुन होता है। अगर घर में हमारे गाय हैं तो अगर वो रो पड़े तो वो अपशकुन कहलाता है। पलंग पर छिपकली पाँव की तरफ भाग जाए तो वो शुभ है। कोई पान या सुपारी लाकर दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, कोई सामने छींक दे, अच्छा शकुन नहीं है।

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से आपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और यहाँ से कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश हम सब और आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बबली आसरा जी, अनुराधा जी और राजेंद्र सिंह जी। हम आपके साथ और जुड़ गए हैं, तो फिर उसके बाद में जो आज का विषय है, कुछ खसकीदरें फन इंडिया जो हमारे इतिहास में क्या हुआ है, उस अंतर्गत में अभी आपके लिए और कुछ संदेश रखा जाएगा।

0: सुनने वालों, आज हम एक ऐसा कार्यक्रम में एक ऐसा व्यक्ति को अपने साथ में जोड़ लिए हैं जो हमारे गांव का और जो तनाख ट्रांसवाल का बड़ी माँ कहलाते हैं। बड़ी माँ का और ये बात हो जाता है कि हमारे शहर में और जो तनाख शहर है और वहाँ जो ट्रांसवाल खदेलते हैं जिसे हम प्राख्तवाइक भी कहते हैं और वहाँ पर वो रहते हैं और सूरीनाम देश से आए हैं। सूरीनाम देश से आकर के और वो वहाँ पर रहते हैं। माए को हम हार्दिक से स्वागत करते हैं। माए जी पीए कबारे
1: कबारा पे
0: एक साल तो इन नीदरलैंड्स दून वांट दी हिंदुस्तानी दैट इज अ बेचे मुइलक ऑफ हैव टू दैट ओक स्प्रोकन फ्रूगर माए
1: मीटिंग वसी नस करके मीटिंग यो फोटो मरम्बर मीट इस ऐसे सी अफुसेंसी बीसेंसी तुअले भांग हालसेन नामोनी दात में भी नहीं देना सरनाम वसी
0: कुछ पुराने बातें हैं और माए जी जो बड़ी माँ कहलाते हैं दामसनेरन अतखात ओक रोम फन माए इस या नई खंतख यार आउट और नई खंतख यार आउट होने से तो कैसे उनका जन्म हुआ अभी हम वो भी पूछेंगे पर माए जी से ये पूछना चाहता हूँ कि माए हु फेल हिफ्टी इमेदल साल क्लाइम केंद्र ऑफ केंद्रन
1: या मित्रों ग्राम चिंग बा केंद्र मा केंद्र दस ग्राम चिंग में कि ग्राम चिंग में कि चिंग पा ग्राम मा ऊपर ग्राम मा
0: सस जेनरेशंस गसीन माए इस 90 यार एंड सस जेनरेशंस गसीन माए मार व विल ओक वेट हु यू हेट
1: मारी
0: माए जिनका नाम हम बड़ी माँ से और मफराव मारी कहलाते हैं और माए

0: Mina sabi wanta ano mina miti dati pura pura ato dat mina sabi.
1: Maar heeft u nog broers en zussen in Suriname of in Nederland?
0: In Suriname mi abis ano mina brada moro. Ik heb alleen een zusje, twee zussen, niet meer.
1: जैसे कि माए जी कहते कि उन्हें दो बहन अभी सूरीनाम में हैं और दोस्तों ये जो बात अभी माए और कहे कि पुराने बातें और जैसे कि अभी आफ सेंसी बिगी सेंसी आदि माए अतेंदाती उन्होंने बेंदे खबर एते आफ सेंसी नगा दे सांदाती कुंत यू मेयर फर्टेल दर ओवर
0: tien sensi, dan ga vijf sensi, bigi sensi, dan ga afu sensi, dat mi sabi. Dan pe mi paroko, susop cimoni ekisi, dan mi teki na loket, na Suriname ya.
1: Da pe yu papa beroko mai?
0: Mi papa beroko na boto, gopuru kofi, temi mu teki insensi, taki mari go teki mi sensi gimi suso afu sensi bigi sensi fe sensi tin sensi no wan ko no wan tra sensi no kisi na moni da te kisi not moro
1: at was wat wij hier zeggen dat klein geld hè
0: klein geld suso klein geld no wan ti papira moni no de suso afu sensi bigi sensi tin sensi dat die wan
1: mai en u praat u bent 90 jaar. Dus dat is heel wat jaren terug. Aur jab dekha jai, wat was de salaris van een persoon in die tijden?
0: Mi pa roko na nga boto. Tepo na nga kuliara boto ko puru kofi. So sop chikmoni dati kisi. So afu sensi, bigi sensi, fef sensi. Dati ek bipay kisi, not moro. No ang papira moni no kisi.
1: Nga...
0: Nga yaklos wasi, na skerpi. Dapen bende. Dapen bende kabore. Ja.
1: Jaglus. Jaglus se krepi.
0: Ja. Jaglus ja. Jaglus nga skrep. Skerpi. Jaglus. Dapen bende kabore.
1: Maar. Dat na Paramaribo of buiten Paramaribo?
0: Paramaribo Suriname ja.
1: Paramaribo Suriname. सुनो हलो हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद में अभी हम माए के साथ फिर और भी सवाल करेंगे जैसे कि आप सुन रहे हैं कि एक सूरीनाम जामी और यानी कि यफांस अफकॉम्स जो इंडोनेशिया से जाकर के सूरीनाम में बसे और उसका बेटी उनका माता पिता दोनों इंडोनेशिया के जन्म थे और उनके और नहीं बताया गया कि कौन शहर सा इंडोनेशिया का वो थे पर फिर भी और माए जो 90 साल का है उन्हें 6 जनरेशन देख चुके हैं अपना और अपने बच्चे का बच्चे इस प्रकार से और हम एक गीत के बाद अभी आपके साथ जुड़ जाएंगे

0: चलो हम माए जो हमारे बड़ी माता कहलाते हैं ट्रांसवाल का, और मफरो मारी जी के साथ जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में, और उनके साथ ये और संदेश बनाया जाता है। माए मार यू पापा बेवरको ना बोतो ना कॉफी फैब्रिक मा सा यू मामा बेंदू
1: मीमा रोको प्राणी आलेसी मीमा नो रोको नो प्रिशुष प्राणी आलेसी न मीपा बे पुरु कॉफी ना बोंग नंगा कुलियारा बो तो अबरा दत मीपा एवरोको मीपा रोको 35 सेंडो आंदी दते दते सात्रा तिमु तेकी मोनी तसुसो को प्रोसेंसी नंग अफुसेंसी बीजेंसी वेफसेंसी दत मीपा ऑन फंग
0: मार माए यो मा बे प्राणी आलेसी लिखवाई ताकि द फा आलेसी प्राणी बे दे एन फा आबे फरदीन
1: या मे मा बे पुरु प्लांशु ने प्राणी आलेसी दामी मा रोको वाहेर दे रोको क्वार्ची क्वार्ची वाहेर दे फोसी बुको पुतें मोनी नो बे दे अबे पिना क्वार्ची हेर दे क्वार्ची वाले हेर दे क्रोशिस रेफिनो बेंदे बेपिना को फालक फोसी सो मेनी सान बेपसा नंगा मीमा फोसी क्रोशिस रेफिन मीमा नो मां बाई क्रोशी किमी मी बाका सो नंगा वांग क्रोशी मी वासे मी वेरिंग बाका सो बेपिना मीमा बेपिना क्वेक मी अन मी नो मीमा बेपिना आलेसिस रेफिन नो फेनी फुबोरिस रेफिन इसाब्दिंग पास पास आलेसिक मुपुना बोंग दा मीमा पुरिंग Mima baka alisi na pang dai puru alisi dai gobori. Puru puru posi mi yang karu dan na alisi fuhu na nga belput dan mi yang posi. Ibat mi bepina posi na nga mi mayara. Mi pane na mi pane radio en mi mane bokario. Bokario di mi jo dan mi mane.
0: Yupa ning radio na nga yuma ning
1: मुजीना
0: या तो सुनने वालों पहले का गरीबताई कैसा था, और हमारे और माए जी ने और उनका माँ किस प्रकार से मेहनत किया। पर माए प्राणी आलेसी एफ नो नो सो मेनी सुमाए येरे रेडियो एन फुरुस मा मेरेंडेस फन मेंस दी इन नीदरलैंड लुइस्टरार सेन मेरेंडेस दिंग खबोरे जासो माफु प्राण आलेसी ना मकला कुरको तो
1: अनो मकला कुरको वांदा मिमुस को पुरु आलेसी प्राण शु दंग बुगो प्राणी हेर देने ना वात्रा सिखियुरु मांटिंग ते सिखियुरु बकानक बपो एता वात्रा आरो को तरांगा फोसी मोनी नो बेंदे
0: माए मार आरो को तरांगा मार
1: इन वांसमा अनो आरो को गिवांसमा तो साय ने देते फुरुकु मांटिंग विकी कांदे यो यंग बिताउ बिरी ना गावात्रा सोंदर नोटी नोटी पिना या बिताउ बिरी बोरी ना गावात्रा वे यंग ना गाव आलेसी दाती नो अनु ओली नो दे नेक्स्ट मे पिना आतिन दाती मे पिना फोसी मी मैक वेक मी

0: सुनो हलो, हम जुड़े हुए हैं और आज एक यफांस माए जो सूरीनाम में जिनका जन्म हुआ है, जो कुछ 90 साल से है और हम सबके अपना पुराने बातें और सुना रहे हैं। माए ओइट इगोना इंडोनेशिया बाका
1: नोइट मी गोना इंडोनेशिया मी नोसा मी यो मी ओमा मी टांटा मी ग्रामा मी नोसा बिनो वांग पामिरी द्रापे de mi no go na Indonesia nooit meer nooit nooit nooit mi go
0: ma di yube yongu ating dati ano so so roko iben fa abende onspanning de ina libi of ano bende
1: ano bende mi dem chini gre mi no sap noti ma mi mai sor ke mi nya na na bitaviri na ngawatra na ngawitali si dati wang mi no sap noti
0: Bitaviri Nangawatra, gekookt, dames en heren, wij hebben de luxe, wij zijn in een veel luxere periode geboren. Aur jaise ki pehle dukh hota tha mata aur betiyon ko lekar ke met de dochters ook reis gepland naar mij.
1: Ja, luko posi de mitami pemitang, jabden alesi grasi tok datami matrasi, nangat chatai sribine ni. Sneki de drape e wakana ondro or snak setai te mi mapureng mi tak mi kado koloko dat agona mi yesi o na goma mi bela au bet mi koloko dat gado segi takano dunoti
0: so erg jo aapne sune sune walo ki pehla garibtai me pani ke samay pe aur saap aadi bhi aa jate the aur पैरा का बना हुआ जो जो बेड होता था और चटाई पे सोया करते थे और माए जो अपना वृतांत बता रहे पर माए यूत्रो वन ओ में ओ ओ रू यू बेंदे द यूत्रो
1: दिमित्रो नंगा मी मासरा मी बेंदे कमी 20 साल
0: के माए थे तो उसका शादी हुआ और माए हो मेनी पिकिंग यू अभी
1: टोटल में अभी 25 ग्राम चिंग ना मैं अभी सेबी चिंग तंग
0: यह भी सेबी चिंग पर माए वहां से मीनो बखरेब तंग नहीं देव थी दे फोसी नो नो सोलेसी ये रे सो माए सो मेनी अभी मी फा अबेंदे दत अला प्रेसिस सेल्फ द सेल्फ द
1: Kaya dah minum sapi na gado tori.
0: Dat na gado tori. Suno alo, jaise ki abhi aap ne sune. Aur 25 gram ching aur uske aur bacche ke bacche ke bacche yani 6 pheed hi talak aur maai ji ka aur जा करके बच्चे हैं तो हम और भी प्रश्न रखने वाले हैं माए जी के साथ और फिर भी एक गीत चला देता हूं और गीत के बाद हम फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं

0: een meisje links, die waren een boy rechts.
1: Mama, ik begrijp helemaal. Tijuanwan meisje da links, Tijuanwan boy rechts. Zou je een takkie eigenlijk?
0: Nee, gewoon je schrijven in zee gewoon. Links, herjarie. Ten ik de zwangerschap, je kies je een meisje, die proost je naar rechts. Nou schrijf je erop in moro. Tijuanwan boy, die schrijf je naar rechts, die kies je een boy. Ja, dat is wel.
1: तो सुनने वालों ये भी एक गुप्त बात है जो माए ने सुनाया कि अगर आपको बेटी और बेटा का अंतर होना चाहिए तो आपको किस ओर सोना है और कैसे आपको पर ये इन बातों को तो शायद अब का वैज्ञानिक की इस बात को नहीं मानेंगे पर उनमें है कि जो पुराने बातें हैं वो भी अपना रखते हैं माए वह हबन मोय वत फरहाल चस्फानी को न हो मार फोसी Wang plantation in Marienburg. Is dat wat aan die voor Marienburg?
0: Nou, mijn is een kantoor, dat is Marienburg. Maar ik heb een nieuw voor Marienburg, want ik heb geen ingre. Ik heb een postje met een boer, met een pabinkje op naar jong foto. Naar Marienburg, dat is mijn dan. Zo meer, maar verder mijn is een
1: Maar in oeere dat Marienburg de meki Malasi de meki Sukru.
0: Ja, voor si ja, mi ma beroko puru na kapuking. Egola ina trem. Ay roko tranga.
1: You ma bende fu Marienburg. Di akong.
0: Ja, di akong ja. Beroko dape ma itana skerpi. Dus ik heb ook dat ik wil een gokoti uitkeng, dat ik wil in een tram. Gomek is ook kru.
1: Dat na pas die den konfu, zeg maar, als contractor uit Indonesië.
0: Pinating, dat is pinating. Ja, dat is ook dat ik mij doe. Kosorku de pchi.
1: और सुनने वालों अगर आपको इसके बारे में भी हम सब एक कार्यक्रम बनाने वाले हैं कि प्लांटाश जो और जाकर के मारियमबर्ग जो हॉलैंड के समय पर बनाया गया था उस अंतर्गत में कुछ जानकारी खोजा गया है और हम सब तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में और जल्द से जल्द एक प्रोग्राम बनाने के लिए ताकि हमें कुछ और भी जानकारी वहाँ का मिल सके इसमें और भी जोड़ देना चाहता हूँ कि माए जो हमारे साथ है माँ मी अभी वेल फ्राख वांत लुकु नौ नो तिंग उनु नो देसो त्रांगा यू नौ मी बखराइब तक साइदे यू देसो त्रांगा ना बीतावीरी नंगा वात्रा बोरी
0: या बीतावीरी नंगा वात्रा मी माय बोरी दत मी न्यांग हाँ पिनो न्यात्रा सान मोरो मिनो न्यां नेक्स्ट दत युवां ते दे ओपो पिना तिंतो
1: En dat maakt je dus zo trang aan toe?
0: Ja, ik ben zo trang aan. Maar ik heb ook niet gezegd dat ik een trang aan krijg. Heel leuk om je. God zegen.
1: Sune walo, jaysa ki abhi aapne sune ki God zegen. Aur jo माए जो जिस समय पे तेल नहीं मिलता था और बीतावीरी जो पानी में बना करके और चावल के साथ खाते थे एक माँ जो अपने बच्चों को इस प्रकार से परवरिश करते थे और आज माए और जा करके 90 साल के आयु में और अभी भी तगड़ा भी चल पाता है और माए पा माँ युवा ताकि तेख द यंगर जो हम द यंग लॉयस्टरास दी देश प्रोग्राम नहीं लॉयस्टर फन मुझे सब वाद दून आन हैं ए तो वाद
0: या नो नो नो यंग बुंग जासो माँ फोसी मी नो यंग बुंग दिमी कौन जासो मी यंग बुंग वेल
1: दी कौन दाई अलाताइट द नो ना ट्रैटिंग ट्रैटिंग श्रीमती मारी जी जो हम लोग के साथ एक कार्यक्रम में जुड़े और यानी कि अपना संदेश रखे हमारे लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं एक गीत रखना चाहता हूं और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो हम सब अभी विषय की ओर बढ़ेंगे और विषय के बारे में हम सब रखने वाले हैं और भी संदेश माए मेवान दंग की ताकि tangie heel heel hartelijk bedankt dat we u mogen hebben interviewen en dat uw stem in de archief, in de digitale archief bewaard zal worden. In die zin van wij zullen de programma wel eens herhalen en dan kunnen mensen naar uw stem luisteren.
0: Alsjeblieft.
1: Dank u wel, Maai. Maar wat zou je nou begrijpen helemaal? Het heeft je tak links sribi, rechts sribi, dan je kiesie meisje naar een boy. Maar ik kan vertellen hoe moro boom zou je bedoel?
0: Zou je bedoel? Deze ribi naar rechts, dat dan tak ik kies van boy. En je ziet naar links, dat dan tak ik kies van meisje. Dat naar recept zou ik geven. Sami ma emit mi matemi dabi mi kapureki telektide.
1: Dan ma suma mo sribi links na rex. Is het die vrouw of die man?
0: Dus a vrouw. Je sribi wan presi leke amang ma a vrouw mo kenki. Tevi tak a vrouw sribi na links e kisi ma mesha. Da no sribi da pemoro a vrouw mo gona rex. Da yo kisi wan boy. Heer jari moest je binnen naar rechts, dan ook iets van boy.
1: Maar Luko, hoe denk je nou kan de... Je hebt ervaring met idee voor je mama?
0: Ja. Ik gebeur zo mee niet maar. Alles maar, hij heeft met hij zo, hij doet zo, hij kies je werkelijk van meisje, van boy. Rechts, links. Dat deed ik naar dat reis, je noemt dat wel, maar zo'n tjie kies je, maar moest kennen voor ze. Maar die zijn naar mijn ideeën, naar mijn meleremi, mijn tijgi, zo moest doen, tegen een nieuwe boy, rechts, tegen een nieuwe meisje, links. Maar hier jaar moest duren, je noemt een kenke moro, tegen een moro tjie, dat je kenke alle jaren, een meisje, een boy, een meisje, een boy.
1: Nu heb ik het begrepen, maar dus... सुनो वालों जैसे कि एक पुराना बात है जो माए ने अपने माँ से सीखे थे और वो बात ऐसे होते कि जो 100 साल पहले के बात है मीरदान होंदतियार सौ इमुदर न्यूसाइन और उन्होंने अपने माँ से सीखे थे और ये बात जो आज रेडियो पे डाल दिया कि किसे और कैसे रहना है और अगर आपको जो आप विश्वास करें तो विश्वास करें ना विश्वास करें तो बस यही सोचो कि माए ने अपना संदेश रख दिया और हमें क्या करना है ये हम पर है सुनो वालों बहुत सा और ये संदेश मुझे अच्छा लगा जो माए ने रखा हम जरूर आपके लिए रेडियो पे रख देते हैं और रेडियो से अब आप क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता सुनने वालों जैसे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो अनेकों देशों में और सुना जा सकता है हमारे साथ जुड़े हुए और श्रीमती दुलम जी मारी दुलम जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे कुछ और प्रश्न रखता हूँ कि माए फोसी देयू रोको दायु चारी यंगो ना पेयु पेयु प्राणी अलेसी
0: तेमी प्राणी अलेसी अदा पे भी चारी यंग मीना बना ब्लाद तेमी की बन्यांग नंगा ग्रुंटु नंगा बितावीरी नंगा ग्रुंटु नंगा वेतालेसी मी बन्यांग Temi banyak minum fenol anu terbaik terkodri. Midringi kuon sampu watrap temi prane alisi tapi mewai. Dan midringi nangami anusho.
1: सुनने वालों देखो गरीब ताई का समय पे किस प्रकार से पानी और प्रयोग किया जाता था पर दोस्तों ये है और ज्योति का प्रकाश ये ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम है इसमें हम सब माए जी जो हम सब के पुराने बातें सुना रहे हैं पर माए यो बे अभी वाटर ले देना ओसो
0: नोवा वाटर ले देनो दे फोसी फोसी वाटर ले देनो दे सिर्फ सिर्फ ही कौन शैम्पू वाटरा गुत्रो वाटरा दापे को पूरे फुवासी क्रोसी बोरिंग दु अलसानी ट्रैफ़ासी नो दे
1: मा इनो सिकी दं
0: Mino sabi erap abis sikit mino sikit mami sepaki na na kutro atra mi keberokeng mi waskrosi nangeng mi borinya nangeng mi dringi lekete fosi teh no bende isap sang dri karu mi losing mi trekini na ina faya watra dat mi dringi sondra syukuru
1: dri karu mae sana tati dri karu
0: You lost in near fire, make a broom. They put na fire water. They you drink it, take a bad rapier.
1: Karuna asansa etaki mais.
0: Mais, ya, mais, drei mais story, you lost in. They put na fire water. Na te, drapig ba.
1: Da soye mekite.
0: Soye mekite, ya. Na dat we drink.
1: Maar lekvai taki you take swampu watra fu bori, you take swampu watra fu wasi krosi. Maar in swampu oktu moro moro sani deto.
0: Moro moro sani de ma isap taki so te meki meki wan peti to. A peti dati a watra ineng to. Ma te to do di ineng tu. Muka mereka wa trafu dringi, fu wasi krosi, fu nyang. Trafasi no de, wa terleden no de.
1: Ma e asansa de kari bhajol. Ade ineng tu?
0: No, dat no de, dat no de. Fa de ka de jok poso.
1: No, taki ching krokodil de taki meki is.
0: Ya krokodil ya tenene wa trafu. So mi tenene ti temi. Teki ember no man guna teki water na inaku na gutro krokodile jobo meskri ki mitro air ember milongo na oso mama krokodile dape mi biari mi krei tu
1: purani baatein hai sunne walon jisme hum sab aur sun rahe hai jo shrimati mari और जा करके हम सब के साथ और बांट रहे हैं इन बातों को सुन करके हमें भी अच्छा लगता है और पुराने बातें में कितना मज़ा है सुनने में और शायद मज़ा इस कारण हो रहा है क्योंकि हमें इसके अनुभव नहीं है कि किस प्रकार से होता था जैसे कि अभी आपने सुने कि रात में जल भरने के लिए और बाल्टी लेकर के और पेटी पे गए और पेटी से और मगरमच्छ जिसे हम क्रोकोडाइल कहते हैं छलांग लगाया और डर के मारा और जो आज हमारे साथ बैठे हुए माए तो शायद वो जब मगरमच्छ अपना वाला दिखा देता तो शायद माए नहीं होते माए इफ क्रोकोडाइल बे विन्यू आदे दत्ती दे यू नो स्टोन जासो
0: नहीं इस अब सर temi pakwe ki foru to ma bigi peti dape watra lai nanga dagu brat krokodil de drape te a foru waka waka so krokodil de nyama foru goni na watra a watra temi kabure kwas krosi bori nyang alasan dringi iya trafasi no de na usan patra de kabure iya
1: जिस समय अभी वाटर लाइडिंग नहीं था जिस समय अभी जो एसवीएम साइट नहीं बना हुआ होगा सुरीनाम में और जा कर के उस समय की बात है ये जो हमारे साथ और आज ये संदेश को रख रहे हैं माए मार बोइत वात्रा युवे अभी स्ट्रोम
0: स्ट्रोम नो दे स्ट्रोम नो दे नो वन स्ट्रोम नो दे डुंगरु नो वन स्ट्रोम नो दे नो अनो दे स्ट्रेफ स्ट्रेफ मोर De tori dat no de pinating. No one strom no de. No one water let no de. Next, kuon blood. Teneti tapu, adungru hilemal. Inosi peyoka.
1: Watra no de, nanga strom no de mae. Mar wansa musude. Maskita musude to.
0: Maskita de lai dat misabi maskita no taki. Tewaka neti inosi peyoka. Nina dungru sokan di tapu wansa ni no sabi. यस क्रेकी
1: उस समय का बात जो बहुत साल पहले की बात है सुरीनाम में ऐसा होता था भारत में भी ऐसा होता था और जब गरीबताई था जब एनर्जी यानी कि फ्लेक्टिंग जो नहीं होते थे घर में वाटर लाइडिंग जो नहीं होते थे और इस प्रकार से जीना पड़ रहा था पर माए यू गोना स्कोरो
0: मीना गास करो सिर्फ स्कोरो नो बेंदे Skoro no de stref stref a bisten da tipe mi posi bedep cinegre. Ano de stref stref a de ma skrifi nanga fouru nanga heng. Tati a skrifi mami mano pot mina skoro.
1: जिस समय और पंखे के और फोरू कहते हैं और पंखे से और लिखा जाता था और उस समय के बात है और उस समय पे और माँ जो अपने बेटी को स्कूल नहीं भेजे। तो दोस्तों, इन बातों को सुनकर हमें भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि माए मी कांदे दिसी फ्राख दे ओवर बौदख मार एफ वात्रा नो बेंदे स्ट्रोम नो बेंदे दफा
0: ने समसा स्ट्रोम नो दे तो मा वात्रा दे मा फाया दे लेती नंग शुआरफु मैं कि फाया ने उडू फाया गोबोरी दादवांग या दातीवांग विशि स्ट्रोम नो दे वात्रा दे faya de akan libi
1: of faden kari nangal
0: fosi misri binang kelambu ma isabi deng kupari lain nak kelambu to tiyo sribi neti de kupari ay nyayu adriye brudu yere fosi
1: तो उसे भी और उसमें भी क्लाम्बो में सोना पड़ता था जो कि माए मी फ्राख बेंदे फोसी फादे में कि फल लिखतिंग नंगा को लाम्पू
0: नंगा सानी क्वार्सिनोल।